والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाऊं में धूप की तरह, जिस्म में रूह

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

¡Súper!

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई, टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकताई, कैसे किस्मत खुलाई। आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Jive Basha the bad, the martial mad, the mera instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take second position. I'm getting ballistic, cataclysmic, bilkul asli. Dekho meticulously, love mere medicinal se. Love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke. Karte kab se, baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone. Tell you the sharif up me off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

ही जलते रहे, भले ये शाम अब दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अभी रात पे यकीन मेरा, अजाइम मुझे ये असीम करे, हकीम है कलम

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम के साथ साथ आप लोगों को आज के प्रोग्राम का जरा टॉपिक बताया जाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो बताते हैं ताकि आप लोग सवाल के ऊपर जरा आए और बातें करें। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप फर्ज करेंगे, आज भी अपनी जिंदगी में हम फर्ज ही करते बिल्कुल आज भी हम फर्ज करने वाले हैं। अगर आप रात को सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है ना वो पीछे चले गए हैं। हाँ जी, आप अपनी जिंदगी के 10 साल पीछे चले गए हैं तो आप क्या करने वाले, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में जो है ना हमने बहुत सारा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लिया है कुछ ऐसी चीजों के पीछे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल वैसे अगर आप सुबह उठे आपको पता चले कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए, जानना चाहती हूँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप जल्दी से आइए, हमारा पेज आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी, तो उसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक जरूर किया करें क्योंकि मुझे थोड़े लाइक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, देन आप कॉमेंट कीजिए। हाँ, यो तरीको ज्वाइन करो तमाम। ओके, जैसे प्रोग्राम जो हिस्सो बढ़ था वन मुख्य बधाई, अगर तमाम सुबुह जो हो तो खबर पे अची वे तो 10 साल पानी जिंदगी जी अगते अची वे यानी पोते हले आया हो, अगते ये पोते हले आया हो तो पोए तवां छा कना, वे 10 साल जके तवां के लगे तो शायद मु विनाय छड्या है, शायद मु वेस्ट करे छड्या है, तो पोए तवां छा कना अगर ताकि वे 10 साल वापस मिली वने। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और चाचा खालिद हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, अचानक कहां गायब हो जाती है, मैं तो यहीं पर हूं, कहते ऐसा ना हो किसी दिन अचानक FM नेटवर्क से गायब हो जाए और हम ढूंढते रह जाएं, हमारे पास तो आपका अता पता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अदा, शाहल आहे अदा, खुश आयो जफा, अरे गाना बुधायो भला सुख, अच्छा ठीक है मैं समझी, बस डेडिकेट यू एंड सर खालिद को, चले ठीक है। उनके अलावा चाचे भी हदीका क्या नहीं जी गाने जी फरमाइश करिए ना, थोड़ा पानी मैसेज की वराय सेंड करो, छोटा ही मुख्य लगे तो ये कमेंट मत ही बनी हुए ना। नजीर को समय सुन रहे बलोचिस्तान से, भाई को वेलकम कहा जाता है, और ऐसे ही आप नजीर भाई क्या कहते हैं, हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है, आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल आगे उगेगी, एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल आगे उगेगी, अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल खाएंगे, और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो, और आपको भी वेलकम कहा जाता है, सबको वेलकम कहा जाता है, टॉपिक को फॉलो कीजिए। यहाँ हुआ जाता है टाइम शॉर्ट कमिशन ब्रेक, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, बस यही हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं जल्दी का नमस्ते।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम.
0: इट्स के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी और सर्जन डॉक्टर स्टार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं. रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं. एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आंखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास. फोन नंबर 0303-261-7077.
2: आपके अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद की मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट

0: मैदा पालिच ब्लेजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744405।
1: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
2: का शहर खास
3: मीरपुर खास
4: तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधी करापते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 0332-2724-301
1: मीरपुर खास की आवाज
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती। बिल्कुल जी, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि जिंदगी में मस्ती का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो कहते हैं पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन मस्ती का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें साथ साथ चले तभी जिंदगी में मजा आता है। रुचि के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज कर लीजिए अगर आप सुबह उठते हैं नींद से जागते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, यानी कि तवा उथो था तांजी अख खुली थी 10 साल तां पानी जिंदगी जे पोते हलिया वाया आयो तो तवा अच्छा गना 10 साल तवा के लगंदो आ तां के रिग्रेट थिंदो आ त 10 साल मो पानी जिंदगी जा वेस्ट कया है, या वरी तवा के लगना त न बाबा ही 10 साल मो पानी जिंदगी ला तमाम बेस्ट गुजारया है, यानी कि बेस्ट तरीके से तां पानी जिंदगी के सही तरीके से सुठी ऐं सिधी लाइन में वठी वया आयो। छो त कुझु माण्हू वाकई हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगी जो हुननि खे ख़बर हूंदो आहे त मूंखे किथे पहुचणो आहे, किथे मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी खे पहुचाइणो आहे, पर कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा जेके भई चवंदा आहिनि बसि गुज़रे थो ॾींहुं गुज़रियो बसि सही आहे। उन्हनि खे को टारगेट न आहे हूंदो, उन्हनि खे को गोल न आहे हूंदो। हा सही चवंदा आहिनि, पैसे जो मस्ती ॾिसो ॿई चीज़ूं गॾु आहिनि, ॿई चीज़ूं गॾु ई मज़ो ॾींदियूं आहिनि। अच्छा मुझे आवाज का बताइएगा, सही आवाज मेरी आ रही, क्योंकि मैंने एक तो पंखा भी बंद कर लिया आप लोगों के लिए, दूसरा ये कि मैंने थोड़ा सा मतलब गुचड़ मुचड़ करके देखा सिस्टम को, मुझे थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ शायद ठीक है। वधिक ताम बुधाए तो वाकई आवाज ठीक अच्छी पई या न। मौजूद है पोस्ट के लाइक एंड शेयर के नालो जिन माण्हुनि कोन कयो आहे, छो त बाबा ये तव्हां सभिनी जो कमाए तव्हां सभु जल्दी जल्दी कयो। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम आपका कहते हैं अच्छी आवाज के साथ लाजवाब, सॉन्ग रिक्वेस्ट है आज, रिक्वेस्ट गाना लाजमी चलाइएगा। बिल्कुल तव्हांजो गानो हलायूं था। अब्दुल अहद अबासी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमारे साथ हैं, जेकब अबासी आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। अच्छा अली अकबर बिरोही कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नूरुल्ला बरना हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। मेरे चलती का नाम गाड़ी, यस, लेकिन हमारा चलती का नाम मस्ती है। रशीद खोजे हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। जीशान अली बोजदार हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अखलाक बलोच भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माय स्वीट एंड क्यूट आरजे सिद्रा, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, खैर से आ गई, वेलकम टू शो स्वीटी, वेलकम कहते हैं, हैप्पी आपको भी। और उनका अलावा फहीम कहते हैं वाकई घंटी दिल में बजन दिया है। आई नो किशोर भाई कहते एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। नहीं, धोखा खाया करे, धोखे खाया करे, अच्छी बात होती है, इंसान जो क्यों खुली वेंदियूं आहिनि। जेको तव्हां हर कंहिं ते अंधो यकीन कंदा आहियो न, उहो थोरो ख़बर पइजी वेंदी आहे त छा करणो आहे ज़िंदगी में। दर्दे दिल कहती अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आरजे, आ गई आप, चंदा जानी बिल्कुल आ गई, आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं। सादिया कहती अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आप ही, आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल, यस आई एम डूइंग वेल, आप बताएं कैसी हैं। और शौकत बलोच कहते हैं सदरा तुम इतना बोलती हो, घर वाले तुम्हें रहने देते हैं घर में, अञा ताईं त रहण ॾियनि था, बेजार आहिनि पर छा था करे सघनि, उन्हनि वटि कोई ऑप्शन बि न आहे, सो बर्दाश्त करणो पवंदो। हिते तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी, ॾाढो भलो गानो अथव, हिनखे इंजॉय कयो, मां थोरो हिते ई आहियां, कारी कोन थी वञा छो त साह निकिरेव।

बताना चाहता हूँ पर सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को भी फॉलो कीजिए।

हम आगे आ जाएंगे और फिर वही सो जाएंगे. यू पॉसिबल नो दो नहीं तांगाल के समझो. अखलक भाई कहते हैं कसम से. हाँ ॾिसो ॾिसो तव्हांखे पछताव आहे माना पंहिंजी ज़िंदगी में. हुजणु घुरिजे. अच्छा अदा चए थो सची ॿुधा राति को मूवी ॾिठी. न न मूवी त कोन ॾिठी. सोचा नी छा ॾिठो. ड्रामो बि कोन ॾिठो. कुझु बि न. ईअं बसि मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ियूं चीज़ूं अची वेंदियूं आहिनि. तव्हां ख़बर आहे थोरो क्रेक दिमाग़.

0: ਜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੁੱਧੋ ਆ ॾाढो वेलो गानो ॿुधी करे मज़ो आयो। हीउ वारो ट्रैक असांजे लिस्ट में आहे, सो असां हिन खे बि ॿुधंदासीं। अली ज़फ़र ऐं आयमा बेग जी आवाज़ में, सॉरी आयमा बेग जी आवाज़ में ॾाढो वैपी गानो आहे। ऐं तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो, पोस्ट खे लाइक शेयर कयो पिया कोन?
1: कयो था

खालिद के दिन 10 साल पीछे जाऊंगा तो आपके साथ को होस्ट बन जाऊंगा, और मेरे पास पता क्यों नहीं हो, आपके पास तो क्या किसी के पास भी ना हो। और क्या कहते हैं फहीम, ब्रेक? हाँ ठीक है, टॉपिक पो मा CSSG तैयारी कंदम। वाह वाह वाह वाह। सादिया कहती आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है। अच्छा मेरे साथ ही मिली हो गानों तो हलाइना से समझ लाए, ठीक है। और रिहाना खान बकर से मेरे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम के साथ।

आवे गाना आपने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने यहाँ पर सुना, और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के साथ बातें जो कि भाई जान हम करेंगे, लेकिन बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए एक और चीज भी होती है कि आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहने चाहिए। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइए कौन कौन हमारे साथ हैं, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, और उसके अलावा पोस्ट को लाइक कर रहे हैं नहीं ये भी बताइए और क्या ही बताएंगे, टॉपिक को फॉलो कीजिए।

क्या बात है, बटर जवानी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करे और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, आज इंडिया के गाने चला रही है ना बाबा, ये सारे पाकिस्तानी गाना चाहते हो तो अगर शादी के लिए अभी ये पोइट्री है, तकाजाए इश्क है मेरी आंखों की मस्ती का, खुला तो दीदार आपका, बंद करूं तो तस्वीर आपकी, वाह वाह वाह वाह डाडी भली शायरी हो। चाचा खालिद लिखते हैं कि उलझा के रख दिया है इस कश्मकश ने मुझको, वो फिर से आ बसी है मुझ में या मैं खो गया हूँ उसमें, वाह वाह वाह वाह। अच्छा हैप्पी के दिन आरजे, आप इतने दिनों से 1 बजे वाला प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही थी, मैं आपका और आपके शो का इंतजार करती थी पर आपका शो रेडियो पर नहीं चल रहा था और इतने दिन से आपका प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो पा रही थी, आपका शो तो सुनती थी पर मैसेज नहीं करती थी, वो इसलिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था इसीलिए आपको मैसेज नहीं करती थी, सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वैसे शायद मैंने कल परसों ही नहीं किया था 1 बजे वाला प्रोग्राम, बाकी तो मैं करती हूँ। अब्दुल गफार रन हमारे साथ हैं, भाई वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, आप भी खुश रहें और हमारे साथ रहें। सादे के दिन टॉपिक में 10 साल पीछे जाऊं तो मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रही होती। अच्छा मनाया गाल इतनी बुरी आदत है ना कसम से, जो मैं बात बात पे बोलती हूँ, अच्छा मनाया गाल

0: अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल हमारी सारे कहते हैं फर्ज और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों के दर्द को महसूस करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। बिल्कुल जी, कितनी अच्छी आपने बात शेयर कर दी। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मैं हूँ हमदुल्ला मला खेल फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू शो। वेलकम कहते हैं प्यारे भाई आपको भी। बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे पूरे 3 बजे तक का। सो यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा, हम न्यूज ब्रेक की जाने में जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली, वापसी आपके पास ही आएंगे, कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर। तो आप भी कहीं नहीं, जरा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग GFM 88 नेटवर्क, प्रोग्राम चलते का नाम मस्ती।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात, सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधा, चावर पटाटा कड़क हैं, जानवरन के खुराक की तलब मौजूद है। गरु वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसातन है बोर दौरान फौत थी वेरन खानदान की मदद ऐं तबाह थी वेरन घरन की बीह तामीर जो हुकुम इम्कानी, बरसातन ऐं बोर के नुकसान बाबत कल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोर मुतासिर इलाइक़न में बिजली ऐं रोड रस्तन की बहाली लाइ भी कदम खण की हिदायत कई। वज़ीर आज़म के ब्रीफिंग में बुधा वो तो मुल्क के मुतासिर इलाइक़न में बोर मुतासिर के महफूज हंधन ऐं मुंतकिल कर पो वे बरसातन ऐं इम्कानी बोर सबब NDMA ऐं सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टीमों मदद लाए तैयार हैं। प्राइमरी उस्तादन जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत बेन मुतालबन की मंत्रा लाए पेट एलिफ जे सदे मुख्तलि शहर में अचाजी मुजाहरा नौशेरो फेरोज दादू कंदकोट नवाब शाह कुम ब्रियासी ए पनोआकिल बेन शहर में एहतजाज किया वो। अगवान जो चवण है जायज मुतालबा तस्लीम न कया वा तो एहतजाज जो दायरो बढ़ाया वो। मेहरापुर भरसा गोधो शाख में वह मासूम बार बुडी वया है, एक जो लाश हथायो है, बे की गोला जारी है। बुडी वेल जैनवरन के अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथायो है, सत वरन के अरम आराई की गोला जारी है। पारसन जो चवण है बारडा शाख भरसा रांद खेलंदे बुडी वया है, गोठन पारा पैंजी मदद पान तहत बुडी वेल बारडे की गोला जारी है। गढ़ी यासीन भरसा गोठ साले ईसाणी में मुड़स हथा जाल कतल, जवाबदार शादी खान ईसाणी पैंजी जाल रहीमा के बंदूक जा फायर करे कतल कयो। मकबूल औरत जो लाश जल्दी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल, पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार न करे सघी। जैकमाबाद पुलिस सहलकार जो घर में गोलू लगल लाश हथायो है, ADC कॉलोनी के घर में अहलकार महबूब जखरानी जो लाश मिलो है। इतलाते पुलिस पहुंची लाश गिरफ्तार मुंतकिल कर छो। वारसन जो चवण है अहलकार सुबह जो खीर वठण आयो हों, खीर वारे बुधा है अज नव थो है, जांच लाया वायासी तो सदस्य लाश मिलो।
1: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: जीए मीरपुर खास FM 88 मीरपुर खास की आवाज।
1: It's time to commercial break.
2: डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी एंड सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती जो ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको कारे पानी जो इलाज आई ऑपरेशन पर्दन जी बीमारिन जो इलाज आई अखिन जी बिन बीमारिन जो इलाज कंदा आहिन टाइम रोजाना सुबह 10 वगे खां 1 वगे ताई शाम 6 वगे खां रात 8 वगे ताई आचर मोकल आहे जुमे जे दी ऑपरेशन कया विंदा एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर अखिन जी अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास मोबाइल नंबर 0303-2617-077।
3: खुशखबरी अवां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप तारीख 18 अगस्त आई 25 अगस्त ब हजार छवीह अंगार एमएस आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी आई जोड़ गोदन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अर्कुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजन टुटल बाह आई टंग आई हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध जैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल 7G रोड खिपरो नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349-8896।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मीरपुर खास में हिक ॾींहं वारी मुफ़्त फिज़ियोथेरेपी कैंप तारीख़ 23 अगस्त आचर जे ॾींहं थेरेपिस्ट करंगे जे हॾियुनि जो सूर कंध जो सूर कुल्हनि जो जाम थियण लकवा फालेज हलण में ॾुखियाई चेल्ह जो सूर गोॾनि जो सूर ऐं ऑपरेशन खां पोइ जे लाॻापियल मरीज़नि जो बज़रिया फिज़ियोथेरेपी इलाज कंदा नोट सूमर खां जुमे ताईं मंझंदि 3 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं छंछर ऐं आचर ते सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि 2 वॻे ताईं ओपीडी कंदा आहिनि एड्रेस नसीम सेंटर साम्हूं इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज लालचंदा बाग मीरपुर खास राब्ते जे लाइ फोन नंबर 0313-3141-551।
1: आपके अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद की मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शुगर मैदा फालिज ब्लड प्रेशर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744405।
4: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुराणी सब्जी मंडी MCB बैंक जे साम्हूं नया पुल हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-77-00।
1: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जीए मीरपुर खास FM 88 की आवाज़ की मुबारकबाद मिलाद जलसा स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स एनजीओस फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स सीएनजी स्टेशंस शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीड कारपोरेशंस सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 03322724301 और 03333722071।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवा और मेहमान नवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

वालेकुम अस्सलाम फुलजी इस स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो है सदरा अच्छा गानों लिखे तो डेरी के डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरेजो साहिबा जी नाले चले ठीक है कोशिश क्या तुम भाईरन जो फरमाइशों हलाइंदा से सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम के सदरा मुस्कान साहिबा शो बेस्ट जवाब गेप को पूरा करने के लिए 10 साल नींद ही नहीं करूंगा बैलेंस बराबर हो जाएगा 10 साल तक किए न सुमदा बाबा किए न सुमदा इमेजिन करो कि हिकड़ी रात तुम निंड ना करना कुछ मानू एडा हुंदा जके अच्छा निंड ता मुके एकड़ी गाल याद आए कुछ टाइम पहले एकड़ी न्यूज वायरल थी हुई त एकरो छोकरो अकेलो रहंदो यानी कि पांजे फ्लैट ते त टे डी गुजरी वया हुन जे अंदर त हुन के वेंदे मानो डिठो ठीक आ लेकिन टे डी गुजरिया हुन के के बाहर इंदे न डिठो हुन जा जे पड़ोसी होया जे आसपास मानो परेशान थी वया सगलो मानो अलाए कुछ थी न वयो आ अंदर दरवाजो भी नाए खुलियो बाहर भी नाए ने तो जदे हुन टीम के घुरायो आ पुलिस वगैरह आया हुन अंदर भगो आ अंदर वया डिठा त हु हमरा सुतो पयो आ टे डी खां हु हमरा सुतो पयो होयो समझ में गाल अची थी टे डी केर मानो निंड करे सके तो बाबा लेकिन उन्हें कहो बिल्कुल या नेक्स्ट लेवल ते या न्यूज वही हुई लाडी फेमस थी तामी शायद डिठी हुई पर ये भी अथव अड़ा मानू भी अथव निंड मतलब डाडी जरूरी हुंदी निंड अगर एकड़ी मानो जेको निंडी आ ना घणी उनके आदत हुंदी आ त हु त बाबा ने के छड़े जो टे डी छा वो 10 डी भी लगातार निंड करे ॾेखारींदव वरी कुझु अहिड़ा बि हूंदा जेके सफ़ा निंड न आहिनि कंदा असां सोचींदा बाबा तव्हांखे निंड नथी अचे ऐं हू चवंदा आहिनि न नथी अचे निंड कंदा कयो ज़रूरी आहे निंड असांजी बॉडी लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे अच्छा हिन तां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मूंखे यादि अची वई उहा थोरी देरि खां पोइ ॿुधाईंदी न त चवंदा हाणे सभु सिधरा ॻाल्हियूं यादि अचनि थियूं मूंखे इलाही ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं पर हिकु अलॻि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी न आहियां सो ही गानो आहे जेको तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करो बिल्कुल जी आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम है जल्दी का नाम मस्ती

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, आपका साथ है क्या बात है। अच्छा सो हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अमीन, हमारे साथ ही अमीन फुलपोटो खैरापुर मीरज से कहते वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहा जाता है। चाचू लिखे तो घर वाले ना रहने दें तो चाचा के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, 24 कलाक पांच घर जो दरवाजा ना खुली शेरी ना, इट्स नॉट सेफ, बंद रखो दरवाजो। अच्छा उनके अलावा संजय जी पाल हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। प्रेमचंद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुमार्टू गोपांग हमारे साथ ही, हाय वालेकुम अस्सलाम, मैं भी आ गया फ्रॉम कंबर सिटी, ओके कहते हैं प्लीज प्ले सॉन्ग, हा हा तोने मुंजी दिल यो माडे साथी मिलियो तो हलाएंगा तांजला गानो। और हैप्पी कहती है आरजे पोस्ट को सब इसलिए लाइक कमेंट और शेयर करते हैं क्योंकि आप आपसे डरते ही अगर हम लाइक नहीं करेंगे तो आप हमें कुटकी देंगे, बिल्कुल यही गाल तब लाइक और शेयर लाजमी किया करें। माँ तरतीब वारो माण है, माँ पांच होंगे इंसान, हर एक इंसान जो है ना तरतीब साल है, उन्हें जो कमा वो सब कम करे। सो ये तान जो कमा तान सब करो। अच्छा साकिब अली पवर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया, मारिया हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम मारिया, आपको वेलकम कहते कहते आप इतने दिन कहाँ चली जाती है, रोज यहाँ बना। अच्छा रोज आया करे ना प्लीज, मुझे आपकी आदत लग गई, आपकी आवाज नहीं सुनती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अरे भाई मैं रोज ही तो आती हूँ, वैसे कल तो जुम्मा था, मतलब मोकल भी न कर।

दाड़ो भलो गानो और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, अगर मैं 10 साल पीछे चला गया तो मैं 10 साल छोटा भी तो हो जाऊंगा ना, ये तो अच्छी बात हुई ना। तरी तो चवाव थी नंढड़ा भी थी नंढड़ा भी कुराड़ा वाली जवान थी ना। आए हाय ओके जी बिल्कुल बिल्कुल।

असल गाल बिल्कुल याद है जेको ताम बुदू था अच्छा बिलाल अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और चाचा जिंदगी में कुछ चीजें जो होती है ना वो अच्छे के लिए होती हैं, वक्त गुजरता है तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो चुका होगा।

की दुकान है। ओके जी, अब्दुल्ला अली हमारे साथ है और अब्दुल्ला आपको वेलकम कहते हैं। अगर सादिया को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया सादिया, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, क्या ही बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हो। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जी गपशप है और गपशप ये जो है ना पूरी पूरी 3 बजे तक जारी और सारी रहेगी। इरम कहती है हाय अल्लाह आप ही। हाँ बस क्या ही कर सकते हैं। अब्दुल जब्बार मरी हमारे साथ यदि सिद्रा अपो कयाला गलतिन के सुधारे इंदुस। वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल या सोच हो जन गुर्जे। और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई हमारे साथी अदीब। अच्छो असा के 10 साल पोइते धिको डेन थी वरी एतरो पंद करे केर इंदो अज जते पोता आयु इ पोचदा जी हाणी पोता।

0: बात है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करिए और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जी, हम जा रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं सरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। चलते के नाम मस्ती
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए And scars reduce करके skin को बनाए radiant, sparkling और दे शानदार miracle glow. Arch beauty cream.
3: खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप, तारीख 18 अगस्त ऐं 25 अगस्त 2026 अंगारे जे दिन सुबुह जो 10 वगे खां मंझंद 3 वगे ताईं लगी रही आहे, जंहिंमें डॉक्टर असद अजीज, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हॾी ऐं जोड़, गोॾन जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्कुन निसा जो सूर, पैदाइशी पेरनि जो टेडो हुजण, टुटल बांह ऐं टंग ऐं हॾियुनि जी कमज़ोरी वारे मरीज़नि जी मुफ़्त कास कंदो, हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर, डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल, वेझो सोढा फ्लोर मिल, 7G रोड, खिपरो। नोट, डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 ऐं 0344-349-8896।
4: अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद की मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शेख, शुगर आने वाले जख्मों वाले मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस, अल शफा मेडिकल सेंटर, न्यू टाउन, मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744-05।
5: सिंधड़ी आमों की सरजमीन,
6: सिंध का शहर खास,
5: मीरपुर खास।
7: चाहो था तो अमा जो पैगाम बेन ताई पहुंचे छावाज जेको अमा जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधी कर आपते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071
5: मीरपुर खास की आवाज

0: के समझते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर जगह पर सिंध की आवाज GFM 88 नेटवर्क।

आबादी बहुत ही प्यारा सा गाना, मैं वैसे गाना सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, अच्छा गाना था। उनका अलावा जेको आसो तमाशे से मौजूद आए प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलती का नाम मस्ती आगे से द्राव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं। और भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हम आ चुके हैं ना प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे लगा अभी मतलब एक लिंक खत्म हुआ है और ये लास्ट लिंक आ गया। चले जी, सो आपको वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा टॉपिक यही पूछा आप लोगों से कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आप सुबह उठते हैं जागते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये पता चल जाए कि 10 साल अपनी जिंदगी के जो है वो पीछे चले गए हैं और उनको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब यकीन जाने कि उनका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप अपना बताएं। खैर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये गाना हमने एंजॉय किया जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुका है। दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि हम जाहिर सी बातें एंजॉय करेंगे। और सजाद अबासी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तोड़फोड़ मेरी चलती रहती है।

सादिया सादिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और समाटो गोपा के सिदरा नाराजगी छा कमेंट शामिल न था कर जैके मथे हुआ सब पढ़िया है अगर तुम नबुधा आए तो बाबा ने मुझे कड़ी गलती है बस भाई हमारे साथ मौजूद है मुझे प्यारी भेण कड़ा हार है खुश आयो सब अच्छा चंगी भली यस तुझो बुधायो फहीम कहते असा तो टे बजे का सुम्मी सुमण जा आदि थी वया आयो अच्छा टे बजे का सही सही सही और ये वकील अहमद सिंधी हमारे साथ हैं विक्यो खास के लिए ओके फ्रॉम सैयद गुलाम हैदर शाह से बाजी आप कैसी हैं आपका शो बहुत अच्छा है बाजी माय फ्रेंड जमील खास के लिए और मुरीद बस इतना ही मैसेज है तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं

ज़रूर भगेदे अदा तू अगर अज रात सुम्ही सुबुह तुझी अख खुले तू 80 साल जी कुराड़ी थी वही आही हिकड़ो दंद ना है पो तुझी फीलिंग केड़ी होंदी सच बुधाया त सुठो लगंदो छो छो त पो मुखे वो टाइम लदो बस मुखे सिर्फ रिलैक्स करनो होंदो कम कार जिंदगी दी भाग दौड़ या सब जको ना वो परते हली वेंदी सो सही आ ऑप्शन सुठो आ

गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ मोहब्बत करने वाले अपनी पसंदीदा इंसान की जस्तजू में ही मर जाते हैं। अच्छा अच्छा सही सही। और हैप्पी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अपने बचपन में जाना चाहती हूँ पर ये तो नामुमकिन है। आप तो जानती हैं अगर आप कहेंगी तो मैं बचपन में चली जाऊंगी। ठीक है इतना मासूम आयो अल्लाह ता सब। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये न कर बाबा ये न कर, देसो सियाणी थी। हाँ थोड़ी देर सा कमेंट्स पहुंचन था, पंद पया कन पंद करे अचन जडे पहुंचन कराची खा लाड़कानो, थोड़ो चंगड़ो सफर था है न पाण समझी सगो था। सो ही गानो हलायो आए ना के भी बुदंदा सी।

0: वाह साई वाह, वाह साई वाह, भलो गानो बदन ताजी अच्छा ही पैनल ते कुछ मैसेजेस आए हैं अलाके थी सजा समझो मैं गाल न दिए चले अच्छा एरम थैंक यू आप हमारे साथ हैं और मकसूद मरा कहते मेरे रैपर से मुस्कान मुझे मास्टर मंसूर का गाना सुनाना बिस्मिलायूं बिस्मिलायूं अच्छा यो गानो आज चली मां कोशिश क्या थी अगर न हलियो सगो न हलियो तो वरी पंजी बजी वाले प्रोग्राम में हलाए वठंदासी ये मौजूद है आपके सी सिद्रा जी सलाम दीजिएगा रिजवान साहब कहां गायब है 78 मोरी से राजा हमीचंद है किशोर कुमार हीरा भाई अकबर कुंभर और राधो महर नवाब ड्राइवर प्लीज प्ले ममताज मोलाई तू मनी मनी असा यार चले दिसा थी हलायूं था यो गानो वैसे रिजवान साहब तो अपने कामों में मसरूफ है वो नहीं करेंगे भाई प्रोग्राम भले ता केडो भी चौस वो हम नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल ये लगता है अच्छा ये मौजूद ही अदी सिद्रा असाना मैसेज कोन पया पढ़ो कावड़ा छा अब्दुल जबार ना बाबा ता जो मैसेज पढ़ी छड़ियो मु और ये मौजूद ही वालेकुम अस्सलाम आपका शो वेरी नाइस है गोट मोहम्मद तैयब थे बुका हबी बुला थे बु हमारे साथ है वेलकम जी वेलकम और बाजी सिद्रा क्या हाल है आपके शो वेरी नाइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली उतरादी है सलाम चौवन कुमार खालिद जुड़े जो अदील अबड़ो रांझन कोरी इकबाल खालिक लाशारी एंड यू सो वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से ये कहते हैं बाजी सिद्रा आई लाइक योर वॉइस इज गुड ज्वेलरी से उम्मीद अली उत्तरादी सलाम किशोर अजीज कुमार अजीज सुमर सोलंगी अंकल गफूर और आकिब शकूर लाशारी एंड यू प्ले शमन हेलो केडा मानू याद अव असा गा त कदे कदे पांजो नालो ही विसरी वेंदो
1: शरत मनामा जी अचवे तू ती कयामा
0: अच्छा फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान कोसो भाई तां जो मोहब्बत हुआ तां सने प्रोग्राम वदो पया अच्छा खालिद असांदे पैनल ते मौजूद आहे मजाक करता हूं आपसे अपना समझ के नहीं नहीं बिल्कुल मैं भी आपसे मजाक करती हूं सी कोई बात नहीं है पांजा पान में आयो टेंशन न वठंदा कयो मुजी टेंशन न कंदा कयो और हक मौजूद मौला इस्लामदत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो से सगन मौजूद आहे डॉक्टर साहिबा तां जो मोहब्बत हुआ तां ओही दा सारा मैसेज करी छड्या है गोट मोहम्मद तैयब थेबो का हबीबुल्लाह थेबो भा तां जो भी मोहब्बत हुआ तां भी वराय वराय मैसेज शेयर करी छड्या है

अच्छा, दर्दें तो लगती है कि कुछ चीजों से मुझे नफरत है, जैसे कि नजरअंदाज करने के बाद दी गई तवज्जो से, सच जाने के बावजूद झूठ सुनने से, दुख के बाद दी गई खुशी से, दर्द देने के बाद माफी मांगने से, और तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से। वाकई यो तो न सिर्फ सबनी के ना चीजों का नफरत आई। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद। और विकियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बक्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। राशिद खोड़ो हमें सुन रहे हैं, कहते आज अच्छे मूड में है, वाई मुझे भलो मूड भी तांगे भला न तो वणे जा वरी वाई चवण पहुंची भी आयो। वाई छो बुदाया तांगे मां अली मोहम्मद भाई, हेलो हेलो काफर थ्या। हाँ हैप्पी, बिल्कुल सही करी, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी गुजर जाता है। वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी केयर असा सगड़ा।

अच्छा हाँ, तोड़ फोड़ की टेंशन नहीं है, बाकी इहो आहे त टेबल जे हेठियां इलाही सारियूं तारियूं पयूं हूंदियूं आहिनि त मूंखे इहो भोंदा करे ईअं करंट न लॻी त मां इलाही खेचल कंदी आहियां, खेचली ॿार आहियां न तॾहिं। सो ही लास्ट ट्रेक असां पंहिंजी लिस्ट में रखी छॾियो आहे जेको असां बिल्कुलु इंजॉय कंदासीं। हदीका क्यानी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। अच्छा सो न बाबा विसरियो केर बि कोन्हे को, सभु यादि आहियो।

अच्छा आशिक अली भाते सलाम जी जी, आपका पांच बच्चे वाला प्रोग्राम 88 पे तो नहीं चलता, वो सिर्फ लाड़काना में चलता है, तो आप फेसबुक पर हमें सुन सकते हैं। अच्छा अख्तियार अली सिंधी भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। किशोर भाई कहते हैं सही आ बाबा, जितना देर करोगी हम उतनी देर बाद कमेंट करेंगे, ता लगे तो लास्ट में तो कमेंट कया ही कोनन के जगह बस स्टार्टिंग में कया। पर हमें मसलू थी भैया।

नहीं, आज वाकई मेरा मूड अच्छा था. और क्यों अच्छा था ये मुझे नहीं पता. बस मुझे मूड ये हुआ, चाइना का मूड है भाई, कभी भी खराब कभी भी सही. किशोर भाई कहते वांधो बैठो आई पो भी कमेंट में देर तो करी कुटकी खाइंद. नहीं नहीं कुटकी नडजो, कुटकी नडजो, मां भलो मणू आयो. सब पढ़ंदा सी, सब कमेंट पढ़ंदा सी, गोले गोले पढ़ंदा सी. अखलाक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं.

0: बिल्कुल हमारे जाने का वक्त आ चुका है, तमाम खा मठू था इजाजत वरी मिलूं था तमाम सा पंची बची वारे प्रोग्राम में। अच्छा जे ना ताई पोस्ट के लाइक शेयर ना कयो करे वठो बाबा करे वठो दिसो लास्ट टाइम थी तमाम जल्दी कयो इन का पोई तमाम का मोकल वठूं था 5 बजे ज्वाइन कजो इन किथे का गलती थी जे माजरत कयो था जना फीडबैक रेजी वया है ने कनाडा रेजी वया है सबने का माजरत सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बिना इस्माइल जी मुलाकात सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधाण ते भी जोर भरो वयो। असद रास वाली जतारी पाकिस्तान शहर के मलेशिया के मार्केट्स ताई पहुंच तेज जोर भरिंदे चयो तो मलेशिया में चावर पटाटन कणक जानवर के खुराक की तलब मौजूद है। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसातन ऐं बोर दौरान फौत थी वियलनि खानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियलनि घरनि जी ॿीहर तामीर जो हुकुम। इम्कानी बरसातन ऐं बोर जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोर मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोर मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी बोर सबबि NDMA सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयारु आहिनि। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण है कराची के मसलन के जिम्मेवार एमक्यूएम है एक साजिश तहत हड़तालू कर सनतन के तबाह कर वो। मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वालू वीडियोज अज भी मीडिया वट मौजूद हैं। एक एक हड़ताल दौरान 30, 40 50 ताई लाश खाया वा हुआ। कराची में मीडिया से गालाइंदे शर्जील इनाम मेमण नफरत की सियासत कदड़ जमायतू पैं सूबे के बदनाम कन थी। कराची जहा मसला हल कर मुस्बत ए जिम्मेवारानी सियासत की जरूरत है। पीपी हमेशा कौमी मुफाद के अवलियत दिनी है। सिंध जहा मानू बाशूर समझदार हैं उसन पाया तो हर लुखे वक्त में केर साणन गड बीहे तो। अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जो है तो सिंध के नव सूबो न पर वसीला इंसाफ आमून बराबरी रोजगार तालीम ए पानी घुर्जे। खराब हुकुमरानी जो हल सिंध के विरांगे पे गोलन बदरा असल बीमारी ए वसीलन की फुरलुट के खत्म करण घुर्जे। कराची सिंध जो तारीखी तकगा ए अणटुट हिस्सो है। नए सूबे के नाले से सिंध के विरहण या मकानी हुकूमत के सुधार के सूबाई खुदमुख्तियारी खिलाफ इस्तेमाल करण वाली हर कोशिश के सिंध जो आवाम नाकाम बनाई। तालीम खाते में बदलिन मुकररिन के नाले से थन्दड़ करप्शन के 4 सेक्शन ऑफिसर के हटाया वो। हटायल ऑफिसर में हसनैन अब्बासी अली अकबर प्रगड़ खालिक जमाली ए तारिक हुसैन शामिल हैं। ई ट्रांसफर पॉलिसी का सवाए मनपसंद मुलाजमन के रिश्वत एवज पोस्टिंग देने का इल्जाम। अली अकबर प्रगड़ के तालीम खाते में हटाने के एक ढी बाद आपाशी खाते में सेक्शन ऑफिसर मुकरर किया वो। तालीम बारे वजीर ई ट्रांसफर का सवाए मनपसंद मुकररिन ए मुबैना माली बेजाबतन की इंक्वायरी मुकरर कर छी। प्राइमरी उस्तादन की सर्विस स्ट्रक्चर समेत बेन मुतालबन की मंटा लाए पेटीएलएफ के सदे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से

0: आता है, तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: लाइ कहिड़ी एलर्जी प्लेट आहे?
1: ॾिसो, तव्हां उहो ई सवाल कयो
2: जी.
1: असां वटि कॉन्सेप्ट हल आहे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग,
2: साइंस,
1: कंप्यूटर, हर क़िस्म जी फील्ड जो कॉन्सेप्ट हल. असां वटि लॉ जो कॉन्सेप्ट न आहे ठहियल.
2: अच्छा,
1: अगरि ॿार खे फर्स्ट ईयर इंटर लेवल ते ई अगरि असां अहिड़ो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए सघूं बेसिक जनरल लॉ जो, त ॿार खे उते ई हिनजी ग्रूमिंग थी वेंदी की आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, आई वॉन्ट टू बिकम एडवोकेट. ॾिसो, जीअं असां प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स जी तरफ़ सां हलिया, त अॼुकल्ह जेको आहे न फील्ड्स वास्ट थींदियूं माज़रत सां. सो बेसिक नॉलेज जे पर्पज़ सां छा थींदो त हुन में हिकिड़ो इंट्रेस्ट क्रिएट थींदो, हिकिड़ो इंट्रेस्ट पैदा थींदो की मां बि वकील थींदो. सो असां वटि इहो आहे त प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग पढ़ण खां पोइ असां डिसाइड कंदा आहियूं की वञिणो काॾे आहे,
2: केॾांहुं वञिणो. ओके,
1: हाणे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इहे बि तमामु सुठी फील्ड्स आहिनि, हुन में स्कोप सुठो आहे. असांजे दुनिया, असांजे मुल्क खे हिन शइ जी ज़रूरत बि आहे. आई टी सेक्टर में बि असांखे ज़रूरत आहे, असांखे बिज़नेस सेक्टर में बि हिननि जी ज़रूरत आहे, असांखे हिन खे इकनॉमिक जेकी छा चवंदा आहिनि या कॉमर्स, कॉमर्स में बि असांखे ज़रूरत आहे. त मतिलबु असांखे हर क़िस्म जी फील्ड में असांखे नौजवाननि जी ज़रूरत आहे. त उन नौजवाननि सां गॾु हिकिड़ो वकील बि आहे, त हर फील्ड में वकील बि हुजणु खपे की जीअं असांजे मुल्क में जेतिरा बि सलाह सां रिलेटेड जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि खे बहितर तरीक़े सां सॉर्ट आउट करे सघूं ऐं जेके बि असांजा लीगल राइट्स आहिनि असां उहे अचीव करे सघूं.
2: ओके, मतिलबु तव्हां इहो था चओ त स्टार्टिंग में जेको आहे त काउंसलिंग थिए करियर जे लाइ, त जीअं इंटरमीडिएट खां बाद में असांजा जेके आहिनि स्टूडेंट्स उहे कंफ्यूज न हुजनि त केॾांहुं वञिणो आहे. ठीकु आहे, अच्छा सर, एल एल बी जी तरफ़ा असां अचूं पिया, जेका अॼुकल्ह नाओ डेज़ मुंहिंजे घर में 4 ईयर्स प्रोग्राम थी वियो आहे, पहिरियां 5 ईयर्स हुयो. त इन जे लाइ कहिड़ी एलिजिबिलिटी आहे? इंटरमीडिएट लाज़मी हुजणु घुरिजे जीअं ॻाल्हि कई, त इंटरमीडिएट बि उन में कहिड़ा जेके आहिनि त डिवीज़न या कहिड़ो ग्रेड हुजणु घुरिजे, इहो बि तव्हां असांजे व्यूअर्स खे ॿुधायो, एज वेल एज एज लिमिट छा आहे, एल एल बी केरु करे सघे थो, केरु नथो करे सघे, ऐं स्टार्टिंग में जेको आहे त एंट्री टेस्ट जीअं लेट आहे, इहा बि तव्हां असांजे सामान खे ॿुधाईंदा प्लीज़.
1: लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली पहिरों डोर आहे एडमिशन वठण जो. एच एस सी हिकिड़ी पॉलिसीज़ जेको आहे न अडॉप्ट करे छॾियूं आहिनि, हुनजो सोल पर्पज़ इहो आहे की जीअं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल जे लाइ असां यूनिवर्सिटी जे लाइ काई बि यूनिवर्सिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी, असां इलाही यूनिवर्सिटी आहिनि पाकिस्तान में, हुननि जी असां हिकिड़ी एंट्री टेस्ट ॾींदा आहियूं की असां कंसर्न डिपार्टमेंट में वञणु चाहियूं था, पंहिंजे सोशियोलॉजी में वञणु चाहियूं था, इंटरनेशनल रिलेशन्स में वञणु चाहियूं था, कंप्यूटर साइंस में वञणु चाहियूं था. त ईअं ई असां जॾहिं लॉ में एडमिशन वठंदा आहियूं त असांखे हिन एंट्री टेस्ट जे प्रोसेस खां गुज़रणो पवंदो.
2: पंहिंजी
1: स्टार्टिंग आहे इंटर क्राइटेरिया, हिन जो
2: इंटर
1: स्पेसिफिक मार्क्स आहिनि, सपोज 50 मार्कूं
2: आहिनि. यस,
1: अगरि कोई 50 जे क्राइटेरिया खे टच कंदो त ही विल बी एलिजिबल. बाक़ी रहियो सीट वठण जो, जेतिरी परसेंटेज वधीक हूंदी, जेतिरी मार्क्स वधीक हूंदियूं, परसेंटेज सुठो ठहंदो, ईअं सीट मिलण जा चांसिस मिली वेंदा. अगरि माण्हू बहितर खां बहितर यूनिवर्सिटी में वञणु चाहे थो त हुनखे उहो क्राइटेरिया बि ओतिरो, माइल स्टोन बि ओतिरो वठी माना अटेंड करणो पवंदो की मां हिन सुठी यूनिवर्सिटी में लॉ एडमिशन जे थ्रू टेस्ट वठी सघां.
2: ओके, अच्छा ही त तव्हां ॻाल्हि खे इंटरमीडिएट जो क्लियर करे पियो, छा हिन में एज लिमिट बि आहे?
1: पर एज लिमिट न रखी अथनि, क्राइटेरिया एंटर ई आहे.
2: ठीकु आहे,
1: तव्हां इंटर बेसिस ते अप्लाई करे छॾो, तव्हांजी एडमिशन थी वेंदी.
2: ओके,
1: एडमिशन खां पोइ तव्हां पंहिंजी डिग्री खे परस्यू, छो की प्राइवेट डिग्री आहे, तव्हां परस्यू करे सघो था पिया.
2: ठीकु आहे, ऐं सर अमूमन इहे सवाल ईंदा आहिनि त स्पेशली जंहिंजी काउंसलिंग न हूंदी आहे करियर जी, त उन्हनि जा इहे ज़हन में सवाल हूंदा आहिनि त असां इंटरमीडिएट खां बाद में अगरि लेट सपोज एल एल बी कयूं था त छा हुन जे लाइ असांखे वरी ॿी ग्रेजुएशन बि करणी पवंदी आहे, या इनफ आहे एल एल बी सां गॾु गॾु ॿियनि करियर्स में वञण?
1: वंस अगेन वधीक उन शइ खे रिपीट थो कयां के ॾिसो, अगरि असांजी काउंसलिंग थियल हूंदी,
2: यस,
1: करियर काउंसलिंग जेके चवंदा, स्कूल लेवल ते बहितर आहे, स्कूल लेवल ते हिकिड़ो करियर काउंसिल ज़रूरु हुजे.
2: ओके,
1: ऑफिशियल हुजे, गवर्नमेंट खां अपॉइंट थियल हुजे, हुनजी हिकिड़ी डिग्री हुजे, हुनजो सोल पर्पज़ इहो हुजे कि ॿार जीअं फर्स्ट ईयर इंटर में या मैट्रिक में अचे त हुनजी करियर काउंसलिंग करे, छोकी मैट्रिक खां पोइ ॿार जो दिमाग़ ठहणु शुरू थी वेंदो आहे, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम. उहो इंस्पायर थींदो आहे एनवायरमेंट खां. सपोज़ अगरि हुनजे घर में सभु डॉक्टर आहिनि त ही वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. ठीकु आहे, अगरि हुनजे घर में इंजीनियर आहिनि त हुनजो फोकस, हुनजो लाड़ो, हुनजो टिल्टेशन काॾे हूंदो इंजीनियरिंग तरफ़. ईअं अगरि हुनजे घर में बैरोक्रेट आहिनि त जेको लाड़ो हूंदो उहो बैरोक्रेसी ॾे हूंदो. सपोज़ इहो त थियो टू मूव विथ अ वे, टू मूव विथ अ विंड. हाणे ॿार जी पंहिंजी मेंटल अप्रोच छा आहे, ॿार पंहिंजी केरियर काउंसलिंग लाइ काॾे वञण थो चाहे, छा उहो ॿिए जे ओपिनियन खे खणी करे पंहिंजो ओपिनियन सम्झी करे अॻिते मूव करणु थो चाहे. लाज़मी न आहे त अगरि घर में 10 बैरोक्रेट आहिनि त अॻिलो बि बैरोक्रेट थिए, थी सके तो सुठो डॉक्टर थियण थो चाहे थी सके तो सुठो इंजीनियर थियण थो चाहे
2: इहो आइडेंटिफाई केयर करे उन जा पेरेंट्स करण या उहो पाण जेको आहे त
1: ॿार ॿार जी मां चयुमि न कॉलेज में स्कूल में
2: काउंसलिंग
1: काउंसलिंग छो की ॿार जेसिताईं पंहिंजी विल न ॿुधाईंदो तव्हां अगरि पंहिंजी सपोज खे हिकिड़ी मशहूर मूवी आहे थ्री इडियट्स
2: सभिनी
1: ॾिठी हूंदी मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा बाबा ॿार जी अॻिते हली करे इंटेंशन न आहे ख़्वाहिश ई न आहे इंजीनियर बणण जी तव्हां अगरि हुनजे मथां उहा सोच विझंदो त ही विल बिकम कंफ्यूज जॾहिं उहो कंफ्यूज थी वेंदो त उहो पंहिंजी सॼे केरियर खे बर्डन खणी हलंदो अगरि सपोज उहो ई शख्स हिकिड़ो बहितरीन फोटोग्राफर थियण थो चाहे तव्हां छा कंदो रोकींदो जीअं हाणे सपोज तव्हां आहियो मां तव्हांजो मिसाल वठां त तव्हां एफ एम जे फील्ड में तव्हां अची वियो लाजमा तव्हां कुझु विजन सोचियो हूंदो न अॼु एफ एम जी फील्ड खां निकिरी करे तव्हां पॉडकास्ट जी लाइफ में आया सुभाणे अॻिते सुठा एंकर पर्सन थी सघो था इट मीन्स तव्हां पंहिंजे केरियर सां हिकिड़े थ्रू आउट हलो था पिया तव्हां विजन क्लियर आहे त मूंखे मीडिया जी फील्ड में ई अॻिते निकिरणो आहे ईअं अगरि ॿार जी ख़बर केरियर काउंसलिंग थींदी रहंदी त उहो डायरेक्ट हेॾे होॾे वञण जे बजाए सिधो ई पंहिंजे एम खे सिलेक्ट करे हिन फील्ड में अची
2: वेंदो छाकाणि त तव्हां पहिरियां बि ॾिठो हूंदो हाणे कुझु अवेयरनेस आई आहे न त पहिरियां ई हूंदो त यार हीअ डिग्री बि करे था वठूं हली आर्ट साइड ते हीअ डिग्री बि थींदी कमु ईंदी पोइ एॾियूं डिग्रीज थी वेंदियूं आहिनि जो माण्हू पाण कंफ्यूज हूंदो आहे त यार आया वञिणो केॾे आहे पाण खे
1: लेखो रिसोर्सिस
2: यस यस यस
1: लेखो रिसोर्सिस अनएम्प्लॉयमेंट
2: ठीकु आहे
1: ठीकु आहे त लाज़मी जे माशरे में असां हलूं था त हुते इन शयुनि जी थोरी कमी बि आहे उनखे कवर अप करण जे लाइ लाज़मी माण्हू हथ पेर हणंदो आहे सपोज अगरि कंहिं बी ए में डिग्री करे छॾी बीए में डिग्री करण खां पोइ माना हुनखे पंहिंजो स्कोप नज़र नथो अचे त चवंदो अगरि मुंहिंजो वकालत में स्कोप सुठो आहे मां कॉम्पिटेंट बि आहियां मां होशियार बि आहियां अगरि मां वकालत जी डिग्री वठां थो ऐं हुन में पंहिंजे पोटेंशियल खे यूस थो कयां पियो त उहो अॻिते निकिरी सघे थो ऐं उर्दू में हिकिड़ी मशहूरु कहावत आहे न की जब उठो तब सवेर आहे के अगरि मिसाल कंहिंखे लेट आवर्स में बि या ॿिनि या टिनि या चइनि सालनि खां पोइ बि अगरि हुनखे इहा शइ महसूसु थी थिए के मां हिते केरियर नथो ठाहे सघां त उहो पंहिंजे डिज़ायर केरियर खे स्विच करे सघे थो हालत अगरि सपोज़ उहो चारि साल किथे बी ए जी डिग्री वठे थो या ॿ साल प्राइवेट में किथे बी ए जी डिग्री करे थो नाउ ही थिंक्स दैट आई एम नॉट फिट फॉर हेयर कॉन्फिडेंस आहे मां वोकल आहियां ऐं मुंहिंजे अंदरि गट्स बि आहिनि मुंहिंजी ड्राफ्टिंग सुठी आहे ऐं मां अॻिते पंहिंजो केरियर ठाहे सघां थो पियो मां पंहिंजी बेसिक नेसेसिटीज़ ऐं बेसिक राइट्स लाइ कंहिंसां विढ़ी बि सघां थो ऐं हक़ वठी बि सघां थो अगरि उहो सोचे थो त मुंहिंजो केरियर वकालत में सुठो आहे मां कंहिंजे अंडर में नथो रहणु चाहियां त ही चूज़ अ फील्ड ऑफ द एडवोकेसी अगरि चाहे थो होॾे अची सघे थो पियो अगरि उहो शख़्स पंहिंजे लाइ पंहिंजे माशरे जे लाइ सोसाइटी जे लाइ अगरि बहितर सोचे थो पियो त डिसाइड कंदा आहिनि ऐं अची वेंदा
2: आहिनि जेका आहे तव्हांखे कमु ईंदी ई ईंदी हमेशह ईअं चई सघूं था खणी
1: बिल्कुलु चई सघां
2: था जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त अगरि बीए थियल आहे हुनमें उहो सम्झे वियो कुझु बि न आहे त हुनखे जेको आहे त हिन तरफ़ उहो अची सघे पियो लेट सर लेट जी तरफ़ अचूं पिया पहिरियों स्टेप इहो ई आहे अगरि मिसाल एल एल बी करणी आहे त लेट जी तरफ़ अचिणो पवे पियो तव्हां ॿुधायो इंटरमीडिएट हुजे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हेक जी तरफ़ा 50% ताईं तव्हांजी इंटरमीडिएट क्लियर हुजे सर जेको इहो अटैम्प्ट थिए पियो केतिरो ड्यूरेशन आहे केतिरे महीननि खां बाद में थींदो आहे ऐं मिसाल जेके स्टूडेंट्स इहो अटैम्प्ट क्लियर नथा करे सघनि लेट इहो टेस्ट क्लियर नथा करे सघनि लॉ एडमिशन टेस्ट हुननि जे लाइ केतिरा जेके आहिनि चांसिस आहिनि हिन टेस्ट जे लाइ
1: हाणे रिसेंटली पहिरियों त 5 हुया हाणे रिसेंटली हुननि 7 अटैम्प्ट कया के तव्हां 7 अटैम्प्ट ताईं जेको आहे न लेट क्लियर करे कंहिं बि यूनिवर्सिटी ऐं प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन वठी सघो था फॉर द फील्ड ऑफ एडवोकेसी
2: ओके
1: हाणे पहिरियों 5 साल डिग्री हुई हाणे हुननि जेको नोटिफिकेशन कढी करे एच एस यारनि खे 4 साल जी डिग्री
2: 4 साल करे छॾियो
1: हिकिड़ो साल घटि करे छॾियो
2: ओके ऐं लेट जे लाइ सर केतिरे महीननि में जेको आहे अप्लाई करणो पवंदो आहे इहो अनाउंस थींदो
1: पूरे साल में एच एस सी वटि शेड्यूल ठहियल आहे पूरे साल में या 4 दफ़ा ईंदी आहे या 3 दफ़ा ईंदी
2: आहे
1: 3 मंथ जे डिफरेंस सां लेट अनाउंस थी वेंदी आहे
2: अच्छा हुनजो प्रोसेस तव्हां ॿुधाए सघो पिया कीअं आहे त हुनखे कीअं अप्लाई करे सघे थो
1: इंटर बेसिस ते एच एस सी में फॉर्म ईंदो आहे पोर्टल ते
2: ऑनलाइन
1: तव्हां फॉर्म भरंदो तव्हां खां पर्टिकुलर्स घुरंदा पर्टिकुलर सबमिट थियण खां पोइ जॾहिं जीअं तव्हांजी टेस्ट वेझो ईंदी त हिकिड़ो नोटिफिकेशन ईंदो मैसेज जे थ्रू अची सघे थो मेल जे थ्रू अची सघे थो या फोन ते तव्हांखे इन्फॉर्म कंदा तव्हां पंहिंजा फॉर्म प्रिंट कराए छॾो ऐं स्पेसिफिक डेट ते तव्हांजी लेट जी टेस्ट आहे अपीयर थियो ऐं 50 मार्क्स खणो ऐं एलिजिबल थी वञो कंहिं बि यूनिवर्सिटी लाइ तव्हां एल एल बी डिग्री खे परस्यू करे सघो
2: ऐं सर जेके लॉ लेट जी तयारी कनि था ऐं काफ़ी सारा तव्हांजा स्टूडेंट्स बि आहिनि जेके तव्हां खां गाइडलाइन वठंदा आहिनि त लेट कीअं करणु घुरिजे फॉर्मेट तव्हां असांजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदा त इहो टेस्ट जो पैटर्न कहिड़ो हूंदो आहे
1: बाबा लेट जो पैटर्न इहो आहे की पहिरियों जा पर्सनल स्टेटमेंट 100 मार्क्स जा क्वेश्चन हूंदा आहिनि तव्हांजी पर्सनल स्टेटमेंट हूंदी आहे पर्सनल स्टेटमेंट में इहो हूंदो आहे की वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, तव्हां वकील छो था थियणु चाहियो, उन में तव्हां पंहिंजे लाइ ॿुधाईंदव, पंहिंजो एम ॿुधाईंदव, पर्पस ॿुधाईंदव, उहो पर्पस लिखणो हूंदो आहे, जीअं असां नंढे हूंदे पंहिंजे अगरि शॉर्ट एसे कंदा हुआसीं स्कूलिंग में त पोइ हुते लिखंदा माय एम ऑफ लाइफ, इनखे असां चवंदा आहियूं हिते पर्सनल स्टेटमेंट,
2: मतिलबु पर्सनल स्टेटमेंट कंहिं बि टॉपिक ते ईंदी आहे, पंहिंजी राय थी सघे थी,
1: पंहिंजी राय ॾियणी हूंदी,
2: ओके ओके ओके।
1: ॿियो तव्हांजो शॉर्ट एसेस,
2: ओके
1: शॉर्ट एसेस 15-16 शॉर्ट एसेस जेके करंट अफेयर्स सां,
2: जी जी जी,
1: जीअं तव्हांजो एनर्जी क्राइसिस थी वियो, तव्हांजो करप्शन ते थी वियो, तव्हांजो डेमोक्रेसी ते थी वियो, डिक्टेटरशिप ते थी वियो, तव्हांजो वाटर क्राइसिस ते थी वियो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ते थी वियो, जेकी सोसाइटी में थींदड़ जेके बि नंढा वॾा इशूज़ हलनि था पिया, जेके सोशल इशूज़ चवंदा
2: आहिनि,
1: जेको आहे न तव्हांखे 400-500 वर्ड्स जो या
2: 300-350
1: उनखां पोइ तव्हांजी थींदी आहे एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट। हाणे एमसीक्यूज़ में छा थींदो आहे, तव्हांजी उन में जीके हूंदी आहे, जीके में तव्हांजी इंग्लिश एंटोनियम्स एनोनियम्स, तव्हांजी करेक्शन्स, ऐं तव्हांजी पाकिस्तान स्टडी, तव्हांजो इस्लामियात में पढ़ंदा
2: आहिनि, उर्दू बि
1: हूंदी आहे, ऐं उन में मैथ बि हूंदी
2: आहे,
1: हिकिड़ो पूरो पैकेज हूंदो आहे उन में एमसीक्यूज़ जो, त इहा टेस्ट तव्हां क्लियर कयो ऐं 50 मार्क्स जे दायरे में तव्हां अचो, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर दैट। अगरि तव्हांजा आइडिया सुठा आहिनि ऐं तव्हां सुठी उर्दू लिखो था त मार्क्स ॾियण वारो मार्क्स ॾेई छॾंदो,
2: ओके ओके।
1: ईअं अगरि तव्हां इंग्लिश में लिखो था ऐं तव्हांजा आइडिया सुठा आहिनि, तव्हांजी करेक्शन सुठी आहे, तव्हांजी ग्रामर सुठी आहे, ऐं सेंटेंसिस पाण में कोहरेंट ऐं कॉम्पैक्ट आहिनि, कॉम्प्रिहेंसिव लिखियल आहिनि, त मार्क्स ॾियण वारो बिल्कुलु तव्हांखे मार्क्स ॾींदो, पर अशर्त इहे कि ग्रामेटिकल एरर न हुजनि, सेंटेंस स्ट्रक्चर सुठा हुजनि, आइडियाज़ तव्हांजा क्लियर हुजनि, ॾियण वारो तव्हांखे 30-15 बि ॾींदो, 20 बि ॾींदो,
2: that means a late check hai, the last me clear karni hai,
1: late is a
2: mandatory, okay.
0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by Arch Beauty Cream, Aloe Vera aur Avocado. Sirf 3 dino mein dark spots, acne and scars reduce karke skin ko banaye radiant, sparkling aur de shandar. Brought to you by Arch Beauty Cream.
3: सिंध धरती के मतवाले, हम मीरपुर खास वाले,
4: अब्दुल अजीज कुरैशी, सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान, सफेद मोतिया जो ऑपरेशन, बजरिया लेजर फेको, कारे पानी जो इलाज, ऑपरेशन पर्दन जी बीमारियों जो इलाज, अखियन जी बीमारियों जो इलाज कंदा आहिन। टाइम रोजाना सुबह 10 वगे

0: student must go to university.
1: University जो लफ्ज मन अगर यूनि मां ॾिठो वञे त यूनिवर्सल टाइप जा जेके आहिनि माण्हू उते ईंदा आहिनि ॿार ईंदा आहिनि के हर मगर सपोज सिंध जी यूनिवर्सिटी आहे त पूरे पाकिस्तान मां पूरे सिंध मां हर डिस्ट्रिक्ट मां को न को ॿार ईंदो आहे लाज़मी जॾहिं को ॿार कहिड़ी डिस्ट्रिक्ट मां ईंदो को कहिड़ी नेचर खणी ईंदो कंहिंजी कहिड़ी तबियत हूंदी कहिड़ो जो बिहेवियर छा हूंदो माना हिकिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी बहितरीन ग्रूमिंग थींदी ॿार जी बुरे जी ख़बर पइजी वेंदसि सुठे जी ख़बर पइजी वेंदसि बोल्डनेस क्रिएट थी वेंदसि इंडिपेंडेंट थियण शुरू थी वेंदो ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठण शुरू कंदो ज़िंदगी में अकेलो रहण बि शुरू कंदो
2: सही
1: लोनलीनेस बि हुनखे फील थींदी टाइमली डिसीशन बि हुनखे वठण ईंदा पंहिंजे प्रॉब्लम्स खे सॉर्ट आउट करण जा बि हुनखे मिलंदा जॾहिं अॻिते हली करे लीड कंदो त हुन में लीडरशिप क्वालिटी बि पैदा थींदी त यूनिवर्सिटी तव्हांखे बेसिकली हिकिड़ो फुल पैकेज आहे जेको तव्हांखे ईंदड़ ज़िंदगी में जेतिरी बि तव्हांखे अलाह हयाती ॾिए थो जॾहिं तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदव त उहा यूनिवर्सिटी लाइफ थ्रू आउट तव्हांखे केरियर कमु ईंदी जॾहिं तव्हांखे दोस्ती मिलंदी त हर क़िस्म जो दोस्त मिलंदो जेको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड थी वेंदो दुनिया में स्प्रेड थींदो सुभाणे उहो ई तव्हांजे कमु अची वेंदो
2: मतिलबु तव्हां यूनिवर्सिटी चवंदा
1: यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन
2: छाकाणि त अक्सर स्टूडेंट्स जो इहो ख़्याल हूंदो आहे त असां कॉलेज साइड कयूं था त असां रेगुलर क्लासिस
1: यूनिवर्सिटी में छा आहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्राइटेरिया साॻियो ई आहे उते बि टेस्ट आहिनि उते बि असाइनमेंट्स आहिनि उते बि सेमेस्टर्स आहिनि उते बि मार्क्स टेस्ट जे हिसाब ॾिनी वेंदियूं आहिनि टेस्ट जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि प्रेज़ेंटेशन जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि ऐं अटेंडेंस जे हिसाब सां ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ठीकु हुन खां अलावा रेगुलर अचण सां छा थींदो आहे की जॾहिं तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदो न तव्हां कोई बि सब्जेक्ट तव्हां खां मिस न थींदो
2: सही था चओ
1: चइनि सालनि जे कैरियर में तव्हां स्लो स्लो हिकु सब्जेक्ट ॿ सब्जेक्ट टे सब्जेक्ट तव्हां वाक़िफ़ु थींदा ईंदो सब्जेक्ट सां जॾहिं तव्हां वाक़िफ़ु थींदा ईंदो त तव्हांजे साम्हूं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइ खुलंदा वेंदा तव्हां पाण डिसाइड कंदो त वॉट काइंड ऑफ माना एक्सपर्टीज़ आई हैव टू तव्हां क्रिमिनल साइड वञणु चाहियो था बैंकिंग साइड वञणु चाहियो था सिविल साइड वञणु चाहियो था फैमिली साइड वञणु चाहियो था तव्हां कॉन्स्टिट्यूशनल जी तरफ़ वञणु चाहियो था पर दैट डिपेंड्स ऑन यू शर्त इहे की तव्हां रेगुलर क्लासिस जॉइन
2: तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे सर अचूं पिया पाण असां इहे लफ़्ज़ ॿुधिया आहिनि लॉयर एंड एडवोकेट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स
1: सिंगल डिफरेंस सिंगल डिफरेंस इहो आहे की लॉयर्स स्टडी एंड गेट्स अ डिग्री
2: लॉयर
1: ठीकु आहे स्टडी करे थो डिग्री वठे थो पियो सजेशन करे सघे थो एडवाइस करे सघे छो पढ़े थो न स्टडी करे थो ठीकु आहे ड्राफ्ट क्रिएट करे सघे थो एडवोकेट्स गेट्स प्रोपर लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न बार की मां कंसर्न कोर्ट में प्रैक्टिस करणु चाहियां थो मूंखे बार जो लाइसेंस खपे दैट इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द लॉयर एंड द एडवोकेट्स
2: All right, lawyer means you got advocate tarah ki ho jayegi license okay degree holder
1: ho jaye
2: yes
1: advice bhi kare sake to drafting bhi kare sake to kyunki padhe do
2: ji
1: theek hai jo vakil advocate jo maqsad hua ke unke सिंध बार या पाकिस्तान बार
2: लाइसेंस
1: ॾिए थी की तव्हां प्रैक्टिस करे सघो था कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में वञी करे या कंसर्न कोर्ट में वञी करे
2: हुन
1: प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जे करे हुनखे एडवोकेट चयो वेंदो
2: ठीकु आहे सो इन खां अलावा असां ईंदासीं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ जीअं अॻाणे तव्हां ॻाल्हि कई त क्रिमिनल सिविल एज़ वेल एज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एज़ वेल एज़ ॿिया बि टैक्सेशन साइड बि हूंदी आहे इन्हनि खे थोरो तव्हां
1: मां क्लियर करे छॾां त क्लियर ईअं आहे की वकील ऐं लॉयर खे हाणे हिकिड़ो टर्म करे ॾिठो वेंदो आहे छोकी तव्हां जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा त हम वकील आहियूं हम लॉयर्स आहियूं सो हाणे इहा हिकिड़ी इंटरमिंगल टर्म थी वई पर अगरि जेकॾहिं तव्हां सर्च कंदो तव्हां स्टडी कंदो त तव्हांखे उते डिफरेंस नज़र ईंदो
2: ओके
1: लॉयर ऐं एडवोकेट में छा फ़र्क़ु आहे
2: अच्छा हिन में
1: हिकिड़ी लाइसेंस
2: बि आहे अच्छा हिन में बैरिस्टर बि अची पियो वञे
1: बैरिस्टर
2: हुनखे बि तव्हां
1: गेट्स डिग्री फ्रॉम द लंडन लिंकन सिंट बारेट लॉ करे अचे लंडन मां हुनखे बैरिस्टर चवंदा भई माना इहे बि ईअं सम्झो त वकील ई आहिनि हुननि खे बि लाइसेंस हूंदो आहे प्रैक्टिस करण जो बि हुननि खे लाइसेंस हूंदो आहे की दे कैन डू प्रैक्टिस पंहिंजी डिग्री लंडन मां थियल हूंदी
2: ऑल राइट सो करियर ते अचण खां पहिरियां हिकिड़ो ॿियो सवाल मुंहिंजे ज़हन में अची वियो पाण स्टेप वाइज़ हिन खे टॉपिक खे खणो लेट ते क्लियर थी वई डिग्री बि क्लियर थी वई रिज़ल्ट बि अची वियो देन हुननि खे छा करणो पवंदो हिकिड़ो गेट जो टेस्ट बि असां ॿुधियो आहे
1: गेट जो बाबा दैट इज़ अ गेट माना दरवाज़ो उहे जनरल असेसमेंट चवंदा आहिनि जनरल असेसमेंट टेस्ट जो सोल जो पर्पज़ इहो आहे के तव्हां बार में प्रैक्टिस करणु चाहियो था तव्हां कोर्ट में प्रैक्टिस करणु चाहियो था तव्हां उनजो प्रोपर हिकिड़ो प्रोसीजर एडॉप्ट कंदव कि अगरि तव्हां गेट जी तयारी कंदो, गेट जी तयारी छा आहे, जेके बि तव्हां चार साल में
2: जेको
1: सब्जेक्ट पढ़िया उन्हनि मां ई हिकिड़ी टेस्ट ईंदी आहे, जेके तव्हां एंट्रेंस टेस्ट चवंदव कि असां मां आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन द कंसर्न कोर्ट, पाकिस्तान में कहिड़ी बि कोर्ट में मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो, जंहिंजे लाइ मूंखे गेट जो सर्टिफिकेट वठण लाज़मी आहे.
2: ओके,
1: छो त गेट जे सर्टिफिकेट खां पोइ मां पंहिंजे जेके बि क्रेडेंशियल्स हूंदा, जेके बि डॉक्यूमेंट्स हूंदा, उहो मां वेरीफिकेशन जे लाइ मोकिलींदुमि कि मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो. पोइ उन में तव्हांखे छा थींदो कि 50% तव्हांखे गेट जी टेस्ट पास करणी पवंदी, उन में बि कुझु अटैम्प्ट्स हूंदा
2: आहिनि. अच्छा, उते केतिरा अटैम्प्ट्स हूंदा आहिनि सर? गेट जा ऐं गेट बि छा हिकु वार ई वठंदा आहिनि?
1: गेट जा 5 अटैम्प्ट आहिनि.
2: ओके,
1: त उहे एचएससी वठंदी आहे.
2: अच्छा, सेम उन वांगुरु लेट वांगुरु,
1: सेम लेट वांगुरु ई हूंदो आहे. उन में तव्हांखे 50% तव्हांखे जेका न मार्क्स उन मां अटेंड करणियूं पवंदियूं, ऐं उन खां पोइ तव्हां जेका न पंहिंजे कंहिं बि प्रोविंस में या कंहिं बि डिस्ट्रिक्ट बार में या कंहिं बि उन में तव्हां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स
2: पाकिस्तान में,
1: पाकिस्तान में किथे बि तव्हां क्रेडेंशियल्स मोकिलंदो, डॉक्यूमेंट्स मोकिलंदो, इंटीमेशन जेके असां चवंदा आहियूं इंटीमेशन मोकिलंदो, जंहिंमें तव्हांजी 6 महीननि जी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हूंदी जूनियर सां, जंहिंमें 10 केसिस लिस्ट ठहंदी तव्हांजी.
2: अच्छा, 6 महीने जी जेका प्रैक्टिस रिक्वायर हूंदी आफ्टर डिग्री हूंदी या बिफोर
1: डिग्री? आफ्टर, जीअं तव्हां डिग्री वठंदो पंहिंजे सीनियर सां प्रैक्टिस कंदो, त उन मां तव्हांजा 10 केसिस लिस्ट ठहंदा, जेकी जंहिंमें तव्हांजी अपीयरेंस हूंदी कि ही हैज़ अपीयर्ड इन दीस केस, उनमें सिग्नेचर थियल हूंदी तव्हांजे सीनियर जी, जेको तव्हांखे हिकिड़ो लेटर इशू कंदो त बाबा हे हिननि केसिस में अपीयर थियो आहे एज़ अ प्रैक्टिस वाइज़. पोइ तव्हांखे उन खां पोइ जॾहिं तव्हां पंहिंजो इंटीमेशन मोकिलंदो, इंटीमेशन मोकिलण खां पोइ तव्हांखां ॿार वोकेशनल कोर्स कराईंदा. कुझु प्रोविंस कराईंदा आहिनि, कुझु न कराईंदा आहिनि. मिसाल सिंध में थिए थो ॿार वोकेशनल कोर्स, इहो 15 ॾींहनि जो हिकिड़ो कोर्स हूंदो आहे, जंहिंमें सिंध जुडिशियल अकेडमी मां जेके बि मेंबर्स आहिनि उहे ईंदा आहिनि, उहे बेसिकली थिक सेखारींदा
2: आहिनि. अच्छा,
1: ड्राफ्टिंग तरीक़ा, वे ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कजे, अपीयरेंस कीअं हुजे, एडवोकेसी जा एथिक्स कीअं हुजनि, कोर्ट में तव्हांखे पेश कीअं थियणो आहे, कोर्ट में तव्हांखे डिलीवरेंस कीअं ॾियणी आहे, त उहो हिकिड़ो 15 ॾींहनि जो हिकिड़ो कोर्स कराईंदा आहिनि. उनखां पोइ तव्हांखे उहो सर्टिफिकेट ॾींदा आहिनि. सर्टिफिकेट खां पोइ सभु डॉक्यूमेंट जॾहिं सिंध बार काउंसिल जॾहिं पुॼंदा आहिनि, त पोइ हिननि जो हिकिड़ो इंटरव्यू शेड्यूल थींदो आहे. उन इंटरव्यू शेड्यूल में अपीयर थींदा आहिनि, उनखां पोइ हिननि खे लाइसेंस मिलंदो आहे.
2: ओके, उहो इंटरव्यू बि जेको आहे
1: उहो बि पास करणो
2: हूंदो
1: आहे. इंटरव्यू पास कयो था पिया, तव्हांखे लाइसेंस मिलंदो, अदरवाइज़ वरी तव्हांखे जेको आहे प्रोसेस खे इनिशिएट करणो पवंदो वरी ॿीहर.
2: ओके, ऐं केतिरा दफ़ा जेको आहे प्रोसेस खे इनिशिएट करे सघे?
1: गेट 5 टाइम आहे.
2: गेट 5 टाइम. ओके, ऑल राइट. ऐं सर, हाणे अचूं पिया पाण डिफरेंट करियर्स ते, उन ते तव्हां ॿुधाईंदा त कहिड़ा करियर्स आहिनि या एज वेल एज़ कहिड़ियूं जेके आहिनि दिस फील्ड्स आहिनि, जीअं सिविल साइड थी वई, क्रिमिनल साइड थी वई, टैक्सेशन साइड थी वई, ॿियूं साइड्स बि आहिनि, उन ते तव्हां असांखे ब्रीफ कंदा प्लीज़.
1: दीज़ आर द फील्ड्स बाबर.
2: अच्छा, LLB करे मां जवाबु ॾिनो, ठीकु आहे. हाणे मां इहो चाहियां पियो तव्हां थोरो इन डिटेल ॿुधायो.
1: डिटेल
2: फॉर एग्ज़ाम्पल, LLB माण्हू करे वरिती, उनखे जेको आहे त लाइसेंस बि मिली वियो, ठीकु आहे, त उहो कहिड़ी उन तरफ़ वञे, साइड तरफ़ सिविल केसिस बि विढ़ी सघे थो या उनजे लाइ कुझु अलॻि कोर्सिस करणा पवंदा या क्रिमिनल सिविल ॻाल्हि सां?
1: न, कोर्सिस जी ज़रूरत न आहे. ॾिसो, अगरि तव्हां मिसाल स्टडी कंदा आहियो, 4-5 साल तव्हां पढ़ंदा आहियो, जीअं तव्हां क्लासिस अटेंड कंदा आहियो, अगरि तव्हां सिखो था पिया हुते, त वंस यू गेट द लाइसेंस, जीअं तव्हां एडवोकेसी जो लाइसेंस वरितो, यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस. हाणे तव्हांखे अगरि क्रिमिनल साइड सम्झ में अचे थी, तव्हांजी स्टडी थ्रू आउट क्रिमिनल ते घणी रही आहे, मे ॾिसो वध में त असां हिकिड़े सीनियर खे जॉइन कंदो एज़ अ प्रोबेशन पीरियड जे लाइ.
2: ओके,
1: प्रोबेशन पीरियड जे लाइ. उन खां अलावा गवर्नमेंट जी तरफ़ां, NGOs जी तरफ़ां या चैम्बर्स जी तरफ़ां हिकु इंटर्नशिप्स ईंदियूं आहिनि 10 महीननि जूं 6 महीननि जूं, जूनियरशिप इंटर्नशिप्स.
2: यस यस,
1: उनमें कुझु अमाउंट बि मिलंदो आहे. उन सां छा थींदो आहे, थोरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी वेंदी आहे. ऐं सपोज़ तव्हां क्रिमिनल साइड वञणु चाहियो था, त लाज़मी तव्हां उन चैम्बर खे जॉइन कंदो, जंहिंमें तव्हां क्रिमिनल जो कमु सिखंदो सॼो. क्रिमिनल जे कम मां मक़सदु इहो हूंदो आहे त FIR खां वठी करे सबमिशन ऑफ द FIR खां वठी करे वेंदे ट्रायल ताईं, ट्रायल खां वठी जजमेंट ताईं, उहो सॼो तव्हां कमु सिखंदव. सो उन में तव्हां बेल बि सिखंदव, ट्रायल हलाइण बि
2: सिखंदव,
1: क्रॉस करणु सिखंदव, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करणु सिखंदव, तव्हां अपील दाख़िल करणु सिखंदव, रिविजन दाख़िल करणु सिखंदव. उहो क्रिमिनल साइड, ईअं फैमिली, ईअं सिविल साइड, डिपेंड करे थो त तव्हां कहिड़े एरिया में रहो था, हुते हुते ज़्यादातर प्रैक्टिस छाजी आहे. तव्हां मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में रहंदो, तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी वैराइटी मिलंदी. हुते तव्हांखे टैक्सेशन जा लॉयर्स मिलंदा, हुते तव्हांखे बैंकिंग लॉयर्स घणा मिलंदा, हुते तव्हांखे कॉर्पोरेटिव लॉयर्स घणा मिलंदा, तव्हांखे इमिग्रेशन लॉयर घणा मिलंदा, ठीक आहे, ईअं तव्हांखे सिविल जा लॉयर्स बि इलाही मिलंदा.
2: दैट मींस यू पंहिंजे मथां डिपेंड करे पियो त तव्हां कहिड़ी साइड तव्हांखे इंटरेस्ट आहे,
1: कंहिं में तव्हां इंटरेस्टेड आहे. ॾिसो न, जीअं इंजीनियरिंग ऐं मेडिकल आहे, हाणे इंजीनियरिंग में किथे इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, किथे सिविल आहे, किथे इलेक्ट्रिकल आहे, किथे मेटलर्जिकल आहे, किथे एनवायरमेंट
2: आहे. बीइंग अ लॉयर आवां समझो
1: पिया, डॉक्टरी में ॾिसो, इहे डॉक्टरी में हर क़िस्म जी फील्ड
2: आहे.
1: डॉक्टर दिलि जो आहे, को अखियुनि जो आहे, को दिमाग़ जो आहे. ईअं वकालत में इहा फील्ड आहे की तव्हां पर्टिकुलर फील्ड में काॾे था वञणु चाहियो डिग्री वठण खां पोइ.
2: अर्निंग ते सर अचूं, अगरि तव्हां हाणे ॻाल्हि कई त इंटर्नशिप में जेको आहे त कुझु अमाउंट बि ॾिनो वेंदो आहे. अक्सर जेको आहे त एडवोकेसी खां बाद में, लाइसेंस मिलण खां बाद में, बीइंग एडवोकेट जॾहिं थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जी सोच हूंदी आहे त असां उथंदे ई अर्निंग करणु शुरू कंदासीं. हिकु त तव्हां हिन ते बि ॿुधायो, ऐं सेकेंडली इहो बि ॿुधायो जी तव्हां ॿुधायो त सिविल साइड बि आहे, क्रिमिनल साइड आहे, फैमिली साइड आहे, कहिड़ी साइड वधीक अर्निंग थी सघे थी?
1: बाबा डिपेंड करे थो त अर्ली डेज में तव्हांजो माइंड छा ठहियल आहे. अगरि तव्हांजो दिमाग़ क्रिमिनल साइड ठहियल आहे, तव्हां पंहिंजी पंहिंजो माइंड ठाहे आया आहियो, पंहिंजे अप्रोच खे क्लियर करे आया आहियो की मूंखे क्रिमिनल लॉयर थियणो आहे, त तव्हां उहो चेंबर ॻोल्हींदो. ठीकु, अगरि तव्हां पंहिंजी स्टडी जे दौरान तव्हांखे जेकी सिविल आहे उन फैसिनेट कयो, तव्हां सिविल साइड हलिया वेंदा. ईअं स्टडी जे दौरान तव्हांखे टैक्सेशन फैसिनेट कयो, तव्हां टैक्सेशन जे
2: तरफ़.
1: इहो डिपेंड करे थो की वकील जी उते जेको आहे न, जेको हिकिड़ो लॉयर अबाउट टू बिकम लॉयर, जेको वकील थियण वारो आहे, एडवोकेट थियण वारो आहे, त ड्यूरिंग पंहिंजी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कहिड़ो सब्जेक्ट हुनखे घणो अट्रैक्ट करे थो पियो, त उन तरफ़ उहो हली वेंदो. रही अर्निंग जी ॻाल्हि, वंस यू गेट द लाइसेंस, तव्हां लाइसेंस वठी छॾो, नाओ यू हैव टू स्टार्ट द अर्निंग. तव्हां पंहिंजी अर्निंग स्टार्ट करे छॾो, तव्हां पंहिंजा केसिस खणणु शुरू करे छॾो, छोकि तव्हां टे साल चारि साल पढ़ो था. जॾहिं असां एल एल बी कईसीं, टे साल डिग्री हुई, तव्हांजे टाइम में पंज साल थी वई, वरी घटाए करे वरी चारि साल डिग्री थी वई. त डिग्री वठण खां पोइ, लाइसेंस वठण खां पोइ, यू आर कॉल्ड द एडवोकेट, नॉट द जूनियर. तव्हां जूनियर न, तव्हां जूनियर सॾाईंदो प्रैक्टिस वाइज़. के सपोज हिकिड़ो सीनियर आहे, हुनजी 15 साल प्रैक्टिस आहे, कंहिंजी 10 साल प्रैक्टिस आहे, तव्हां जूनियर उन पॉइंट ऑफ व्यू सां सॾाईंदो. जॾहिं लाइसेंस मिलण खां पोइ, यू ऑल आर द एडवोकेट्स,
2: ओके,
1: तव्हां यू आर द पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी. बाक़ी रही आहे ॻाल्हि के अर्निंग, अर्निंग बिल्कुलु फस्ट डे खां तव्हां शुरू करे छॾियो. अगरि तव्हांखे को केस मिले थो पियो, तव्हां उतां अर्निंग शुरू करे छॾियो.
2: ऐं सर ईअं बि आहे त अर्निंग जे लाइ जंहिंमें तव्हांजी एक्सपर्टाइज़ वधीक आहे, तव्हां उन साइड वधीक अर्निंग करे सघो.
1: डिपेंड करे थो तव्हांखे कहिड़ो सब्जेक्ट घणो फैसिनेट करे, कहिड़ी फील्ड घणो फैसिनेट करे थी पई. ॿियो डिपेंड करे थो, अगरि तव्हांखे सीनियर जॉइन करणो आहे, त सीनियर जे लाइ तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ साल ऐं ॿ साल एज़ अ प्रोबेशन पीरियड, जेके असां चवंदा आहियूं यूटी पीरियड, जेके अंडर ट्रेनिंग, उन में तव्हां छा सिखंदा, कोर्ट जो अंदर प्रोसीजरल वर्क सिखंदा. चवंदा न, गुड लॉयर हैज़ टू बिकम अ क्लार्क, माना हुनखे क्लार्क जो कमु बि सिखणो पवंदो, ड्राफ्टिंग जो कमु बि सिखणो पवंदो, हुनखे सबमिशन जो कमु बि सिखणो पवंदो, हुनखे फाइलिंग बि सिखणी पवंदी, हुनखे केस लॉस बि कढणा पवंदा, हुनखे प्रोपर महिनत बि करणी पवंदी. वकील सां गॾु उनखे क्लारिकल कमु बि अचणु खपे, छो त लाज़मी केस हुनजो आहे. सुभाणे केस जी सबमिशन खां वठी करे केस जे हलाइण ताईं हुनखे सॼी नो हाउ हुजे, कंहिं ते डिपेंडेंट न हुजे. अगरि हुनखे ड्राफ्ट लिखणो आहे, ही हैज़ टू ड्राफ्ट. अगरि हुनखे सबमिशन करणी आहे, साईं पाण सबमिशन करणी आहे. हुनखे केस एडमिट कराइणो आहे, पाण एडमिट कराइणो आहे. पेजिंग करणी आहे, हुनखे पाण पेजिंग करणी आहे. त सॼो फुल पैकेज हुजे हुनखे, माना शुरू खां वठी आख़िर ताईं सॼी जी सॼी हुनखे पंहिंजी लाइफ खे, हुनखे पंहिंजी प्रैक्टिस जे दौरान इनखे बि पंहिंजो हिसो करणु खपे. जॾहिं तव्हां एक्सपर्ट थी वेंदव, पोइ अगरि तव्हां वटि कोई ज्वाइन करणु चाहे थो एज़ अ जूनियर, पोइ तव्हां हुनखे कमु सिखायो.
2: अच्छा सर, हिन ते तव्हां ॿुधाईंदा त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई की सीनियर वटि जेको आहे त सिखणु घुरिजे, केतिरो टाइम रिकमेंड कंदव त उहो सीनियर वटि रहे?
1: इट डिपेंड्स अपॉन How quickly is learning? केतिरो जल्दी हो सिखे थो.
2: कुझु सीनियर्स क्विकली सेखारींदा बि कोन आहिनि, काफ़ी सारा अहिड़ा जूनियर्स ॾिठा आहिनि.
1: ॾिसो, सिखण जो पर्पज़ इहो न आहे त तव्हांखे वेही करे पढ़ाईंदा, सिखण में तव्हांखे ऑब्ज़र्वेशन करणी पवंदी.
2: Okay.
1: सर पढ़ी त तव्हां आया आहियो, तव्हां छा सिखणु आया
2: आहियो?
1: पढ़ाई तव्हां करे आया आहियो, स्टडी तव्हां करे आया आहियो, लॉस तव्हांखे ख़बर आहे, ठीकु आहे. हाणे तव्हांखे सिखणो आहे प्रोसीजरल वर्क.
2: ओके,
1: प्रोसीजरल वर्क तव्हांखे किथे ख़बर पवंदी? कोर्ट जे अंदरि. Procedural work hundo cha hai, from the typing of the case to the submission of the case to the final judgment decree. Je halaina ka vati kare, mana likhana ka vati kare, aakhri judgment tai jo case halainda hunda sa, inne saje ke procedural work chaumbo a.
2: Okay,
1: wo unne ke sikhno hundo a, wo unne te matlab depend kare da, agar wo confident a, unne ji grammar suthi a, unne ji language suthi a, unne de andar ikdo dabang ikdo jo kana cha attitude a, ai wo sutho akhlaq jo malik a, ऐं आर्ग्यूमेंट्स पंहिंजा सुठा थो रखे, पंहिंजी रिसर्च सुठी थो रखे, सो ही कैन बिकम अ गुड एडवोकेट आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस. जीअं लाइसेंस वठी छॾियो, हुन जे अंदरि सॼी क्वालिटीज़ अवेलेबल आहिनि. He has no need to join any kind of senior. He has to start his own practice
2: as
1: individual, as an independent, as we call it, as an independent lawyer.
2: अच्छा, हिकु त हिकु पासो इहो थी वियो. हाणे सेकेंड पासे असां कॉमन मिस्टेक्स ते अचूं. काफ़ी सारा एडवोकेट्स मूं अहिड़ा बि ॾिठा जेके जूनियरशिप ते हली हली काफ़ी मायूस थी विया. हुननि जी का अर्निंग कोन थी, देन हुननि इहा फील्ड ई स्विच करे छॾी, चवनि यार असांखे करणी कोन्हे. कहिड़ी हुननि जी अहिड़ियूं कॉमन मिस्टेक्स आहिनि जंहिं वजह सां हुननि खे इहो स्टेप करिणो
1: पियो? कुझु जूनियर या कुझु जेके लाइसेंस वठण खां पोइ वेट कंदा असां वटि केस अचे तव्हां स्टडी. मां पंहिंजे सीनियरनि खां सिखियो आहे त अगरि मिसाल सपोज़ जेसि ताईं केस अचे तव्हां स्टडी त कयो न, तव्हां जजमेंट्स पढ़ो, तव्हां अथॉरिटीज़ पढ़ो, तव्हां जेकी ऑफिस में फाइल पई आहे तव्हां हुनखे पढ़ो. ठीकु आहे, मेजर एक्ट्स पिया आहिनि, क्रिमिनल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि, सिविल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि, हर क़िस्म जो लॉ पियो आहे, त हुन ते स्टडी कंदा रहियो. जॾहिं स्टडी न हूंदी, तव्हांखे प्रोसीजर वर्क जो ख़बर न हूंदो, त ऑटोमेटिकली डेफिनेटली तव्हां मायूस थींदो. जेकॾहिं तव्हांखे प्रोसीजर ख़बर हूंदो, वर्क ख़बर हूंदो, लॉ ख़बर हूंदी, तव्हांखे ऑटोमेटिक कंहिंखे सुठी एडवाइस कयो था. इन्वेस्टमेंट छा आहे? वकालत में पहिरीं इन्वेस्टमेंट आहे, इन्वेस्टमेंट आहे तव्हांजी एडवाइस. अगरि तव्हां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियणु शुरू था करे छॾियो, तव्हां कॉन्फिडेंस बिल्ड था कयो. तव्हांजी इन्वेस्टमेंट इहा ई आहे, टाइम जेको तव्हां ॾियो था. तव्हांजी लोकेलिटी में मिसाल सपोज कुझु बाबर मुंहिंजो हे इशू आहे, मूंखे एडवाइस खपे. बाबर खे पाण ई ख़बर न हूंदी त एडवाइस काॾो ॾींदो? बाबर खे हुनजे लाइ पढ़णो पवंदो, बाबर खे स्टडी करणी पवंदी. सपोज असां लीगल कॉर्नर पॉडकास्ट असां शुरू कयो आहे, हिन में असां इम्पार्ट छा था कयूं? एडवाइस इम्पार्ट छा था कयूं? नॉलेज काॾो थी अचे? किताबनि में आहे
2: न? स्टडी करणी.
1: ठीकु आहे, उन खां पोइ जेको पाण जनरल डिस्कशन कयूं था, काॾो था कयूं? प्रैक्टिकल वर्क. त प्रैक्टिकल वर्क असां हुते सिखूं था पिया, स्टडी असां किताबनि में कयूं था, पोइ असां हिकिड़ो पूरो पैकेज था थी वञूं था. अगरि असां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियूं था त डेफिनेटली उहो चार माण्हुनि खे थो ॿुधाए, चार अठनि खे था ॿुधाइनि, अठ सोरहं खे था ॿुधाइनि. कीअं तव्हांजी क्लाइंटेशन
2: वधंदी?
1: लॉयर हू नोस थिंग्स. सो देट इज़ जेको इनिशियल स्टार्टिंग में जेकी थिए थी की लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ स्टडी,
2: लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
1: लैक ऑफ स्टडी आहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आहे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नाहे, ऐं मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयरनेस नाहे, केस लॉस कीअं सर्च करनि हुनजी नो हाउ नाहे. ठीकु आहे, सिर्फ़ु फाइल खणी करे कोर्ट ताईं पुॼणु ई वकालत नाहे. हुन केस खे हलाइणो बि आहे, हुन केस खे खटणो बि आहे. अगरि मिसाल इंसान न बि खटे, रिज़ल्ट सलाह जे हथ में आहिनि, पर एतिरी महिनत थियल हुजे, हिकिड़ो तव्हांखां सेटिस्फाई थी
2: वञे.
1: सो दीज़ आर द कॉमन मिस्टेक के जेसि ताईं तव्हां वटि केसिस नथा अचनि, तव्हां पंहिंजे सीनियर जे अंडर पढ़ो, सीनियर जे अंडर सिखो, सीनियर जेकी इंस्ट्रक्शन ॾे हुनखे फॉलो
2: फॉलो कयो.
1: अगरि मिसाल तव्हांखे काई शइ मिले त उहा गाइडेंस वठो, नथी सम्झ में अचे पुछो. इवन एतिरे क़दुरु अगरि तव्हांखे कोर्ट रीडर खां बि पुछणो पए न, सर मूंखे नथी सम्झ में अचे, तव्हां हुन खां ई शइ पुछो वञी करे. पुछणो न मुंझणो, तव्हांखे कॉमन मिस्टेक्स न थिए. जजनि जे साम्हूं तव्हांखे एग्रेशन न ॾेखारिणो. ठीकु आहे, तव्हांखे हम्बल तरीक़े सां, छोकी तव्हांखे रिलीफ वठिणो आहे, तव्हां हम्बल तरीक़े सां हुननि खे ट्रीट कयो. ठीकु, पंहिंजे क्लाइंटेशन जे करे, क्लाइंटेशन जे करे तव्हांखे कोर्ट स्टाफ सां नाहे विहणो. छो अल्टीमेट पर्पज़ छा आहे? टू गेट द रिलीफ. रिलीफ ईअं मिलंदो न अगरि तव्हांजो बिहेवियर,
2: तव्हांखे
1: त पोइ रिलीफ कीअं मिलंदो? दे आर द एग्रेसिव. हाणे तव्हांजो ठहियल टुक रिलीफ बि तव्हांजे हथ मां निकिरी वेंदो. हिन जे करे तो बी हम्बल. Submission is the best policy. ईअं न आहे त सबमिशन में माना तव्हां किरिया पिया हुजो. Doesn't mean. Submission जो मतिलबु इहो आहे की बी हम्बल इन योर नेचर. अगरि तव्हां उहो थी था वञो त पोइ इन में इहो आहे त तव्हांजी क्लाइंटेशन बि वधंदी, तव्हांजो एटीट्यूड बि सुठो हूंदो, ऐं प्लस में तव्हांखे सुठो रिलीफ बि मिली सघे थो. सॼियूं ॻाल्हियूं हिकु तरफ़. मेन जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त अगरि तव्हांखे लॉ जी फील्ड में अचिणो आहे त तव्हांखे स्टडी करणी आहे. तव्हांखे स्टडी करणी आहे, तव्हांखे ड्राफ्टिंग बि सिखणी आहे, तव्हांखे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयर बि हुजणो आहे, कंटेम्प्रेरी स्टडी बि तव्हांजी हुजे, प्लस में तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजी जेकी रुटीन वाइज़ जेके केसिस आहिनि हुते बि नो हाउ हुजे. काफ़ी
2: सारी ॾेई वियो पर मां हिकिड़ी एडवाइस अञा तव्हांखां वठंदुसि जेके लॉ स्टूडेंट्स आहिनि स्पेशली उहे दौरान स्टडी जेको आहे स्टडी खे टाइम घटि ॾींदा आहिनि ऐं प्रैक्टिस जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि कोर्स जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि इवन सेकेंड ईयर में ई हलिया वेंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां छा एडवाइस ॾींदा
1: मां पंहिंजे कॉलेज में जिते मां पढ़ाईंदो आहियां मां ॿारनि खे बि इहो ई सम्झाईंदो आहियां की तव्हांखे हफ़्ते में अगरि सपोज़ चार ॾींहं तव्हांजी चार ॾींहं पंज ॾींहं क्लासिस हलनि थियूं तव्हांखे ॿ ॾींहं मिलनि था फ्राइडे ऐं सैटरडे जेके फ्राइडे बि क्लास हले थी सैटरडे तव्हांखे मिले थो पियो अगरि तव्हांजे अंदरि शौक़ु आहे सिखण जो की मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो तव्हां वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो
2: ओके
1: उन वीकेंड में तव्हां कंहिं सीनियर खां परमिशन वठी छॾो या इंडिविजुअल बेसिस ते तव्हां पाण कोर्ट अचो तव्हां लाइब्रेरी में पंहिंजा को दोस्त आहिनि कोलीग्स आहिनि या तव्हांजा सीनियर आहिनि भाइर आहिनि ब्रादर्स
2: आहिनि
1: या तव्हांजा पाड़े वारा आहिनि जेके वकालत करनि था पिया शाम जे टाइम तव्हां हुनजे चैम्बर्स ते हलिया वञो वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं ॾियो वीकेंड में ॿ ॾींहं ॾियो बाक़ी जेके चार ॾींहं आहिनि पंज ॾींहं तव्हां पंहिंजी स्टडी खे ॾियो जेको टीचर अचे थो कुझु सिखाइण थो अचे सपोज बेसिक नॉलेज अगरि तव्हांखे हूंदी न त प्रैक्टिस में अचण जे टाइम तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी अगरि तव्हां वटि बेसिक नॉलेज न हूंदी त प्रैक्टिस में अची करे वरी उहे पंजनि सालनि जी महिनत कंदो वरी तव्हां उहो जेको आहे न थ्योरेटिकली जेको तव्हां न पढ़ी सघियो वरी तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में अची करे सिखी माना जे सिखण वारे प्रोसेस सां हुनखे सिखी वठंदो
2: सही था चओ
1: बहितर इहो ई आहे त तव्हां मुंहिंजी सजेशन इहा ई आहे की अगरि तव्हांखे इंट्रस्ट आहे शौक़ु आहे माना न आहे पर एटलीस्ट तव्हांजो जेको प्रैक्टिसिंग ईयर हुजे न उहो तव्हांजो फोर्थ ईयर हुजे या फाइनल ईयर हुजे
2: ओके ओके
1: उन में तव्हां साल पंहिंजो भले तव्हां पंहिंजो अचो पंहिंजे सीनियर्स खे जॉइन कयो छोकी तव्हां 90% कोर्स पंहिंजो कवर करे चुका
2: तव्हांखे
1: बेसिक नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे क्रिमिनल जी नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे फैमिली जी नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे अनुशाद जी तव्हांखे नॉलेज मिली स्पेसिफिक रिलीफ जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे लैंड लॉज जी तव्हांखे जेको आहे न नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे रेंट लॉज जी तव्हांखे नॉलेज हाणे सिर्फ़ु तव्हांखे विद इन आख़िरी साल में छा करणो हूंदो आहे पाण खे पॉलिश करणो हूंदो आहे जंहिंमें असां छा चवंदा आहियूं जंहिंमें इंटर्नशिप बि ॿार जॉइन करे छॾंदा आहिनि उन सां छा थींदो आहे तव्हांखे ड्राफ्टिंग सिखणु सबमिशन अपीरिंग ऐं तव्हांखे जेको आहे न कोर्ट में कीअं तव्हांखे पंहिंजे केस खे रिप्रेजेंट कजे उहे शयूं तव्हांखे सेखारी वेंदियूं जेके अॻिते हली तव्हांखे प्रैक्टिस में कमु ईंदियूं
2: ऑलराइट शिबा साहब थैंक यू सो मच तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो ऐं असांजे अॼु जे टॉपिक ते तमामु सुठी नॉलेज असांजे लिसनर सां एज़ वेल एज़ असांजे व्यूअर सां शेयर कई अवांजा थैंकफुल आहियूं
1: मां वंस अगेन तव्हांखे चवंदुमि की फीडबैक लाज़मी आहे अगरि सपोज़ असां को ओपिनियन ॾिनो आहे अगरि कोई ओपिनियन सां अगरि डिफरेंस रखे थो पियो तव्हां पंहिंजा फीडबैक ॾियो बाबर तव्हां सां नंबर शेयर कंदो ऑनलाइन बि
2: असां
1: फेसबुक ऐं इंस्टा ऐं व्हाट्सअप ते जेके बि मीडियम्स आहिनि उते असां वेंदा आहियूं अगरि को ओपिनियन कंहिंखे लॻो की न वकील साहब इहो ओपिनियन सही न ॾिनो आहे चङे तरीक़े सां त तव्हां असांखे ओपिनियन करेक्ट कराए सघो था ईंदड़ प्रोग्राम में असां हुनखे करेक्ट करे
2: छॾंदासीं
1: छोकी हर ॾींहुं सिखण जो ॾींहुं हर जॻह कुल इल्म त असां बि न
2: आहियूं
1: जेको असांखे वक़्तु ॾिनो आहे असां उन जो ई फ़ाइदो वठी करे तव्हां ताईं ॻाल्हियूं पुॼायूं था पिया
2: ऑल राइट सो बिल्कुलु व्यूअर्स तव्हांजी फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो असांजो नंबर आहे 0300-1134-88 अगले प्रोग्राम में वरी नए मौजू सां गॾु अवां सां मुलाकात थींदी तेसी ताईं अलाह हाफिज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खिते की बन

कराए हुए इंसामिया खेचे के हिदायतूं जारी कई हुयूं उन्हनि ते अमल थियो तिबी मुआइने वक़्तु पीटीआई पानी जी भेण पिण मौजूदु हुई पीटीआई अस्पताल ॿाहिरां माण्हुनि जा हजूम गॾु करे अदालती हुकमनि जी भञकड़ी कई सिहत जे मामले ते सियासत न थियणु घुर्जे इतलात वारे फर्ज़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त पीटीआई पानी जॾहिं पाण वज़ीर आज़म हो त माण्हुनि जी सिहत ते तंज कंदो हो पंहिंजी सिहत बाबति संदसि बयान सभिनी जे साम्हूं आहे हुन कॾहिं बि कंहिंजी सिहत ते तोहीन जोगो रवैयो अख़्तियार नाहे कयो तिबी ऐं क़ानूनी मामले खे सियासत जी भर न चाढ़ियो वञे।

बार हुक्म जो मुबैन आ वतकड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराए छी। जिम्मेवार तोहीन अदालत को जिम्मेवार करार दियण, पीटीआई बानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण, संदस तिबी मुआयनो कराण की इस्तदा। जैद भंडारी सलमान अकरम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजी अजम शहबाज शरीफ, कानून वारे वजीर आजम नजीर तारण, सुख समाव वारे वजीर अताला तारण के दौर बनाया वो। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में 6 महीने लाए फौज मुकर्र करण की मंजूरी दे छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 तहत दिनी वही। पाक फौजों 3 कंपनियों 6 महीने ताई रावलपिंडी में मुकर्र हुंदी। जारी कल पधराई मूजिब फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरतयाल बरकरार रखी। शहर के असास हंधन अहम रोडन रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के असायतो बनाया वो। फौज मुकर्री की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त दिनी वही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल न होने जो नोटिस वे जांच कमेटी जोड़े छी। कमेटी के समूरन रुखन जो जायजो वी हकीकत जो पतो लगाने की हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 का सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी की तकनीकी सहूलत इंसानी वसील सॉफ्टवेयर बाबत हकीकत जो जायजो वी। कमेटी मरीजन के रेफर कर मखसूस निजी इदारे के फायद पुचाने वे मामले जो भी जायजो वी रिपोर्ट इजाजत के पेश कर। पाकिस्तान और मलेशिया जो दहशतगर्दी मलेशिया की रोकथाम इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार बढ़ाने इतफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में सहकार बढ़ाने भी जोर भर हो। आसिफ जरदारी पाकिस्तान शेयर की मलेशिया की मार्केट ती पहुंचते जोर भरीदे तो मलेशिया में चावर पटाटन कड़क ए जानवर की खुराक के तलब मौजूद है। घरू वजीर मुलाकात मौजूद हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज सिंधड़ी आम।
1: सरजमीन
2: सिंध का शहरों फलों की खुशबुओं से महकते इस शहर में अब आवाज की सूरत बनी है
1: मीरपुर खास की एक नई पहचान
2: जीए मीरपुर खास FM 88
1: मीरपुर खास की आवाज
2: जीए FM 88
1: सिंध की आवाज।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद पेट के तमाम अमराज और शुगर की वजह से पाँव में हो जाने वाले जख्मों वाले मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744045।
4: जैस बेमिसाल प्लस ऑफर से पाए जबरदस्त कनेक्टिविटी। 5 GB डेटा लोडे विद जैज 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *9277 हैश डायल करें। शराइत जवाबित लागू है।
5: अवां जे पेंजे शाम 6 बजे ताई लगी रही है जेमे डॉक्टर कोमल तारिक फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर सरफराज शाह फिजियोथेरेपिस्ट करंगे जे हडिन जो सूर कंध जो सूर कुल्हन जो जाम थियन लकवा फालेज हलन में दुखियाई चेल जो सूर गोडन जो सूर और ऑपरेशन का पोए जे लागापिल मरीजन जो बजरिया फिजियोथेरेपी इलाज कंदा। नोट सूमर खां जुमे ताई मंझंद 3 बजे खां शाम 6 बजे ताई छंछर और आचर ते सुबह जो 10 बजे खां मंझंद 2 बजे ताई ओपीडी। एड्रेस नसीम सेंटर सामू इबन रुश्द गर्ल्स कॉलेज लालचंदा बाग मीरपुर खास। राबते के लिए फोन नंबर 03131341551।
6: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाने अमा के परेशान थण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तहां कें भी बीमारी में मुब्तला आते खवेदवा है सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447700।
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप तारीख 18 अगस्त आई 25 अगस्त असद अजीज MBBS MS आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी आई जोड़ गोडन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अर्कुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजन टुटल बाह आई टंग आई हडियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध जैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेजो सोढ़ा फ्लोर मिल 7G रोड खिपरो। नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते OPD कंदा। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03053276608 आई 03448896।
3: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जीए मीरपुर खास एफएम 88 की आवाज़। मुबारकबाद मिलाद जलसा स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स एनजीओस फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स सीएनजी स्टेशन शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीड कारपोरेशन सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 0333-227-24301 और 0333-372-071।
1: तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: दोस्तों ही बैत पढ़ियो मूं सऊदी ताइफ शहर खां अब्दुल्ला रिंद जो जेको मुझो भा है अल्लाह साईं उनके खुश रखे ऐं सऊदी अरब खां खास फरमाइश जेके अब्दुल्ला रिंद जा दोस्त आहिनि परदेसी अब्दुल सत्तार छुटो खालिद भुट्टो ऐं माजिद सिंधी जी खास फरमाइश
1: हो मुंहिंजा जे प्यार विसारे तमाम न्या हुन खे
0: कीअं गुल ढोलक वारा उस्ताद रज़ा का दर्शन बंजारा

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे, फिर रस्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की, और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशन और कंटेम्प्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो वह शाश प्रशाश है।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी जिस अस्पताल मुंतकली बारे मामले थे तहरीक।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इन आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कहाँ हो यार? मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
0: व्हाट? तुम्हीं ने तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।